राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है स्वप्न विज्ञान। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।

सुनने वालों, आज मैं आपको बताऊंगी पशु पक्षी शकुन विचार। यानी पशु पक्षी जब दिखाई देते हैं तो कैसे शकुन होते हैं। कीट पतंग आदि पर शकुन। यदि कीट पतंग वृक्ष आदि से निकले तो अनावृष्टि। यानी कि सुनने वालों, कीट पतंग जैसे लाइट वगैरह के ऊपर आपने देखा होगा, एक मच्छर मॉस्किटो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। अगर वो हमें किसी वृक्ष में से निकलते दिखाई दिए तो उसका मतलब है कि वो अच्छी बात नहीं होती। चींटियों पर शकुन। यदि चींटियाँ सिर के ऊपर वाले छत के भाग से निकलें तो शीघ्र ही धन संपत्ति भोग सामग्री की प्राप्ति। सुनने वालों, यदि चींटियाँ हमें छत के ऊपर से निकलती दिखाई दें तो उससे हमें धन की प्राप्ति होती है। धृत पात्र में घुसकर आहोरात्रि वही रहे। धन नाश चोरी। लाल घर के ऊपर से निकले, चोरी भय प्राण भय। चावलों में से निकले, धन की वृद्धि। काली कोषाग्रह से निकले, धन की अत्यंत वृद्धि। अधिक सीलन या भूसे आदि से चींटियां निकले तो फल रहित। काली अंडे रहित वर्षा का आगमन। उत्तर दिशा से चींटियां निकले तो सुख देने वाली। पूर्व दिशा से चींटियां निकले 12 घंटे तक भय रत। दक्षिण दिशा से चींटियां निकले तो लाभ। पश्चिम दिशा से चींटियां निकले धन संपत्ति का लाभ। अग्नि कोण दिशा से चींटियां निकले 12 घंटे तक अग्नि भय। वायु दिशा से चींटियां निकले ईंधन की प्राप्ति। ईशान दिशा से चींटियां निकले लड़ाई की सूचक।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। कान खजूरा संबंधी शकुन। किसी कार्य वंश घर में जाते समय बाईं ओर से मिल जाए तो शुभ होता है, चलते समय दाईं ओर से मिल जाए तो हानिकारक, लड़ाई झगड़ों और गृह क्लेश का कारण होता है। मार्ग में चलते समय रास्ता काटे बिल्ली से ज़्यादा हानि होती है। किसी प्रकार सिर पर चढ़ जाए तो अत्यंत कष्ट होता है। सुनने वालों, कान खजूरा वो है जानवर कि जो कान के अंदर घुस जाता है। अब डच में क्या कहते हैं वो मेरे को नहीं पता,

सर्प संबंधी शकुन, यदि सर्प दिखाई दे यानी कि सांप अगर दिखाई दे तो उसके क्या शगुन होते हैं। किसी भी कार्य से जाते समय अगर सांप मिल जाए या सांप दिख जाए तो अशुभ और वापस लौट जाना चाहिए। बाईं ओर दिखाई दे तो अशुभ है। मार्ग में काला नाग दिख जाए तो वो भी अशुभ है। नाग नागिन का जोड़ा दिख जाए तो धन गड़ा होना, तो उसका मतलब है हम जिसको नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे तो उनके धन की प्राप्ति होगी। ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ अगर सांप दिखाई दे तो उच्च पद प्राप्ति होगी। फन को ऊंचा करके बैठा हुआ सांप मिल जाए अत्यधिक शुभ होता है सुनने वालों।

समय भौरा मिल जाए तो, बाई और किसी फूल पत्ते पर बैठा हो शुभ शकुन। अगर भौरा किसी फूल और पत्ते पर बैठा हो तो उसका शुभ शकुन होता है। बाई और आ जाए हित कर तो उसका बुरा शकुन होता है। सामने घूमता दिखे भौरा, अगर हमारे सामने उड़ता हुआ दिखाई दे तो बहुत लाभदायक होता है। फूलों पर घूमता दिखाई दे तो कष्टकारी होता है।

मधुमक्खी संबंधी शगुन। मधुमक्खी को तो आप सब जानते हैं सुनने वालों, होनिंग बाइट यानी जो शहद बनाती है, होनिंग बनाती है, अगर वो दिखे तो उसके क्या असर होते हैं। यदि मधुमक्खी सामने दिखाई दे तो ठीक नहीं है, बाईं ओर दिखाई दे तो शुभ धन लाभ मिलता है सुनने वालों, दाईं ओर से मधुमक्खी दिखाई दे तो परिश्रम पर पानी फेर दे, जितने भी हमने मेहनत की है उस पर सब पानी फेर देती है, यदि पीठ पीछे दिखाई दे तो हानिकारक होती है, लौटते समय दाईं ओर दिखाई दे शुभ आहार प्राप्ति तो हमें शुभ समाचार मिलते हैं और अच्छा खाने की प्राप्ति होती है सुनने वालों।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, चकवा संबंधी शकुन। चकवा एक पक्षी का नाम है सुनने वालों, और वो कैसा दिखता है, कैसा रंग है, वो आप लोगों को ढूंढना चाहिए। चकवा यदि उड़ता हुआ दिखाई दे तो हानिकारक होता है, कई एक साथ बैठे हुए दिखाई दे तो अत्यंत सुख प्राप्ति होती है। यदि चकवा का जोड़ा दिखाई दे, नर और मादा, तो समृद्धि का घातक। जोड़ा अति स्वर करे शुभ नहीं। यदि चकवा नर और मादा दोनों ऊंचे स्वर में गाएं कुछ तो अशुभ होता है, वो शुभ नहीं होता सुनने वालों।

संबंधी शगुन। चील को तो आप सब जानते होंगे सुनने वालों, एंगल्स में उसको ईगल कहते हैं। यदि चील घर से चलते समय या घर में घुसते समय दिखाई दे, चील बोले सुख की प्राप्ति। मुंह में रोटी आदि लिए दिखे, अन्न भंडार भरे। लौटते प्रवेश समय बोले धन लाभ। घर पर आकर बैठ जाए या मंडराए अशुभ। सुनने वालों, यदि चील जोर जोर से चिल्लाती है तो इसका मतलब है कि सुख की प्राप्ति होगी, और वो मुंह में रोटी लिए हुए हमें दिखाई देती है तो हमारे अन्न के भंडार भरे रहेंगे। और यदि हम घर में प्रवेश करते हैं और वो बोले तो धन लाभ मिलता है, और घर पर आकर ऊपर बैठ जाए या मंडराए तो वो अशुभ माना जाता है। सुनने वालों,

उल्लू संबंधी शकुन। यदि उल्लू बोले यात्रा पर जाते समय रात्रि समय अत्यंत अशुभ, दाई ओर से उल्लू बोले अत्यंत अशुभ, बाई ओर से उल्लू बोले अत्यंत शुभ, किसी के घर पर बोले अशुभ अनिष्टाकारी, दिन में उल्लू बोले अनिष्टाकारी, जाते समय हूँ हूँ करे अशुभ, जाते समय की ओर की देखे शुभ, पीठ के पीछे चले इच्छित फल प्राप्त होता है। सुनने वालों, आप तो सब जानते हैं कि उल्लू जो है पक्षी वो दिन में सोता है और रात में जागता है। अगर कोई ज़्यादा सोए तो उसे हम कहते हैं क्या उल्लू की तरह सो रहा है, तो वो उसके सारे जितने भी कार्य हैं सब ज़्यादातर अशुभ ही माने जाते हैं। बस एक कार्य है कि अगर पीठ के पीछे चले तो इच्छित फल की प्राप्ति होती है। सुनने वालों,

बगुला संबंधी शकुन। घर पर जाते समय बैठा दिखाई दे तो सामान्य फल की प्राप्ति होती है। बैठा हुआ बोल रहा हो तो कष्टकारी होता है। साधारण उछल कूद करे तो लाभकारी होता है। यात्रा समय ऊंची उड़ान भरे बहुत ही शुभ माना जाता है। सुनने वालों, बायां पैर ऊपर उठाता मिले इच्छित धन प्राप्ति होती है। अपने ही देह को निहारे यानी अपने ही शरीर को देखे स्त्री संपत्ति का लाभ। बार बार प्रवासी को देखे उसकी सारी बाधाओं को हर ले यानी कि जो बाहर से घूमने वाले लोग आते हैं अगर उनको देखे तो उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। सारस संबंधी शगुन। सारस भी एक पक्षी का नाम है, अगर वो दिखाई दे तो कैसे शगुन होते हैं। अगर सारस पक्षी मार्ग में दिखाई दे तो मेल मिलाप होता है। यदि दोनों पक्षियों का नर और मादा जोड़ा दिखाई दे तो सर्व सुख संपत्ति प्राप्त होती है। दाईं ओर से बोले अशुभ माना जाता है, बाईं ओर से बोले शुभ श्रेष्ठ माना जाता है। सम्मुख बोले तो राज सम्मान मिलता है। सुनने वालों, तोता संबंधी शगुन। तोता यदि घर से चलते समय तोता दाईं ओर होकर बोले तो शुभ माना जाता है, बाईं ओर होकर बोले तो भय और संकट माना जाता है। सामने क्रूर वाणी बोले तो अशुभ बंधन में माना जाता है। सुनने वालों, तोता यानी पापा खाई

मुर्गा संबंधी शगुन, इसको तो आप सब लोग जानते हैं। घर से जाते समय यदि मुर्गा देहरी पर चढ़कर बोले, यानी घर की दीवार के ऊपर चढ़कर बोले, तो बहुत लाभकारी होता है सुनने वालों। बाईं ओर से दाईं ओर आ जाए तो शुभ माना जाता है। सामने हो और बोले अधिक लाभ मिलता है सुनने वालों। दाईं ओर रहे शुभ माना जाता है, बाईं ओर रहे अशुभ माना जाता है। यदि मुर्गा हमारी पीठ पीछे बोले तो अधिक हानिकारक, शत्रु भय, प्राण भय, उस दिन घर से ना निकले सुनने वालों। स्वाभाविक से अन्य स्वरों में अगर मुर्गा बोले तो क्लेश कारक होता है। सायंकाल घर लौटते समय बोले, अगर शाम को हम घर लौटते हैं तो अधिक कष्टकारी, परंतु जोड़ा प्रेमरत दिखाई दे तो इच्छित भोगों की प्राप्ति होती है सुनने वालों। प्रत्येक पहर में अगर मुर्गा बोले तो अशुभ माना जाता है।

सुनने वालों, ये जो गीत अभी आपने सुना ये सुरीनाम के एक मशहूर कलाकार श्रीमान रामदेव चेतू जी की आवाज़ में था। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, गौरैया संबंधी शगुन। गौरैया भी एक पक्षी का नाम है सुनने वालों। यदि इसकी ध्वनि हमें चींची दिन में सुनाई दे तो उसके क्या असर होते हैं, क्या परिणाम होता है। दिशा में, यदि पूर्व दिशा में और प्रथम पहर में इसकी आवाज़ सुनाई दे तो राज्य में सम्मान मिलता है। यदि दूसरे पहर में इसकी आवाज़ सुनाई दे तो आमोद प्रमोद होता है। यदि तीसरे पहर में गौरैया की आवाज़ सुनाई दे तो मित्र मिलन होता है, कि मित्रों से मिलन होता है। चौथे पहर में आवाज़ सुनाई दे तो व्यापार में लाभ मिलता है। और पूर्व दक्षिण में अगर गौरैया की हमें आवाज़ सुनाई दे तो प्रथम पहर में अगर सुनाई दे तो आग से हानि और भय होता है। दूसरे पहर में सुनाई दे तो व्यापार में लाभ मिलता है सुनने वालों।

दक्षिण दिशा में अगर गौरैया हमें उसका स्वर सुनाई दे तो प्रथम पहर में सुनाई दे तो जुए से धन की हानि होती है, दूसरे पहर में स्वर सुनाई दे तो व्यवसाय में वृद्धि मिलती है, तीसरे पहर में स्वर सुनाई दे तो प्रियजन मिलाप होता है, चौथे पहर में अगर स्वर सुनाई दे तो सुख वृद्धि होती है सुनने वालों।

अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में गौरैया का स्वर सुनाई दे, अगर प्रथम पहर में सुनाई दे तो सुख में वृद्धि मिलती है सुनने वालों, दूसरे पहर में सुनाई दे तो राज द्वारा सम्मान मिलता है, तीसरे पहर में अगर इसका स्वर सुनाई दे तो अप्रत्याशित समाचार मिलता है, अगर चौथे पहर में सुनाई दे तो मूल्यवान वस्तु मिलती है, और पश्चिम दिशा से अगर इसका स्वर सुनाई दे, अगर प्रथम पहर में सुनाई दे तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दूसरे पहर में सुनाई दे तो चोरों से भय होता है, तीसरे पहर में अगर सुनाई दे तो लाभ की संभावना होती है, चौथे पहर में अगर गौरैया का स्वर सुनाई दे तो अप्रिय समाचार से गहरा अफसोस होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, अब मैं आपको बता रही थी गौरैया पक्षी के बारे में। वो एक चिड़िया जैसी लगती छोटी सी, और बाकी आपको खोजना है कि वो कैसी दिखाई देती है और उसका रंग कैसा है। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। पश्चिम उत्तर, यदि गौरैया चिड़िया हमें पश्चिम और उत्तर में दिखाई दे, तो अगर प्रथम पहर में दिखाई दे तो संकट का सामना करना पड़ता है। दूसरे पहर में दिखाई दे तो धन की प्राप्ति होती है। तीसरे पहर में अगर हमें गौरैया पक्षी दिखाई दे तो सम्मान प्राप्ति होती है। चौथे पहर में अगर दिखाई दे तो शत्रु से झगड़ा होता है सुनने वालों। और अगर उत्तर दिशा में दिखाई दे, अगर प्रथम पहर में दिखाई दे तो बुरा शगुन होता है। दूसरे पहर में दिखाई दे तो पति पत्नी में क्लेश झगड़े होते हैं। तीसरे पहर में दिखाई दे वस्त्र आभूषण की हानि होती है। अगर चौथे पहर में दिखाई दे तो मृत का समाचार सुनने को मिलता है सुनने वालों।

गौरैया पक्षी अगर उत्तर पूर्व दिशा में हमें दिखाई दे, प्रथम पहर में दिखाई दे, तो चोर चोरी करता पकड़ा जाए। दूसरे पहर में दिखाई दे तो निराशाजनक समाचार मिलता है सुनने वालों। तीसरे पहर में अगर दिखाई दे तो आग से हानि होती है सुनने वालों। अगर चौथे पहर में हमें ये पक्षी दिखाई दे तो यात्रा की संभावना बनती है।

कबूतर कपोत। यदि इसकी गुटर गु दिन में सुने तो क्या होता है सुनने वालों? पूर्व दिशा में प्रथम पहर में सुनाई दे तो धन का लाभ होता है सुनने वालों। दूसरे पहर में सुनाई दे तो आग से भय होता है। तीसरे पहर में सुनाई दे तो शीघ्र ही विवाह होता है सुनने वालों। अगर चौथे पहर में इसकी गुटर गु सुनाई दे तो बाधाएं पीड़ित करती हैं सुनने वालों। पूर्व दक्षिण दिशा में अगर इसकी गुटर गु सुनाई दे, प्रथम पहर में सुनाई दे तो व्यवसाय में वृद्धि होती है। दूसरे पहर में सुनाई दे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है। तीसरे पहर में इसकी गुटर गु सुनाई दे तो शत्रुओं का नाश होता है। चौथे पहर में अगर इसकी आवाज़ सुनाई दे तो शुभ समाचार मिलता है सुनने वालों।

सुनने वालों, मैं आपको बता रही थी कबूतर हिंदी में कहते हैं, कपोत संस्कृत में कहते हैं, और सुरिनामी भाषा में दोईफी कहते हैं। तो अगर उसकी गुटर गु हमें दिन में सुनाई दे तो उसके क्या परिणाम होते हैं सुनने वालों। अब हम आगे चलते हैं। यदि दक्षिण दिशा में इसकी गुटर गु सुनाई दे, अगर प्रथम पहर में सुनाई दे तो अप्रत्याशित धन लाभ, दूसरे पहर में सुनाई दे खतरे की संभावना, तीसरे पहर में सुनाई दे अप्रिय घटना की संभावना, चौथे पहर में अगर इसकी आवाज़ सुनाई दे तो शुभ समाचार। यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर इसकी आवाज़ सुनाई दे, प्रथम पहर में सुनाई दे शारीरिक पीड़ा, दूसरे पहर में सुनाई दे कपोतजनन में वृद्धि, तीसरे पहर में अगर इसकी आवाज़ सुनाई दे तो धन अर्जित करेगा, चौथे पहर में अगर इसकी आवाज़ सुनाई दे तो राज्य में सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर पश्चिम दिशा में इसकी आवाज़ सुनाई दे तो अगर प्रथम पहर में सुनाई दे आय में वृद्धि होती है, दूसरे पहर में सुनाई दे वाहन खरीदने की संभावना, तीसरे पहर में इसकी आवाज़ सुनाई दे आगे उन्नति की आशा, चौथे पहर में अगर इसकी गुटर गु सुनाई दे तो धन लाभ निश्चित होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, अगर उत्तर दिशा में प्रथम पहर में कबूतर की गुटरगों सुनाई दे तो चोरों का भय रहता है, दूसरे पहर में सुनाई दे तो व्यापार में लाभ मिलता है, तीसरे पहर में अगर सुनाई दे तो वाहन की प्राप्ति। सुनने वालों, अगर तीसरे पहर में इसकी गुटरगों सुनाई दे तो हमें कोई गाड़ी, कोई भी वाहन प्राप्त हो सकता है, चौथे पहर में नहीं इनकी आवाज़ सुनाई दे तो मुसीबत की संभावना, तो समझो कोई मुसीबत आने वाली है। उत्तर पूर्व दिशा में प्रथम पहर में अगर इनकी गुटरगू सुनाई दे तो मित्र वर्ग में वृद्धि, कि हमारे मित्रों में वृद्धि होती है, दूसरे पहर में अगर इनकी आवाज़ सुनाई दे तो आग का भय, तो आग लगने का भय रहता है सुनने वालों, अगर तीसरे पहर में इनकी आवाज़ सुनाई दे तो राज्य दंड का भय, तो हमें कहीं से कोई भी दंड मिल सकता है, चौथे पहर में अगर इनकी आवाज़ सुनाई दे तो चोरी द्वारा धन हानि, तो हमारे धन की हानि होगी सुनने वालों।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। बाज, बाज भी एक पक्षी है सुनने वालों, जो गुरु तेग बहादुर जी थे, सिखों के 10वें गुरु, उनके पास हमेशा बाज पक्षी रहता था और पुराने ज़माने में वो जगह जगह संदेश भी पहुंचाया करता था। यदि वह पूर्व दिशा में दिखाई दे, प्रथम पहर में दिखाई दे, तो वर्षा में विलंब, तो वर्षा देर से होती है सुनने वालों। दूसरे पहर में दिखाई दे तो राज्य दंड, तो हमें राज्य से दंड मिलता है। तीसरे पहर में दिखाई दे तो शत्रुओं द्वारा कार्यनाश, जो हमारे शत्रु हैं वो हमारे बनते हुए कार्य को भी बिगाड़ देते हैं। अगर चौथे पहर में वो पक्षी दिखाई दे तो अच्छी वर्षा की आशा, तो वर्षा खूब अच्छे से होती है। और अगर दक्षिण दिशा में बाज पक्षी दिखाई दे, अगर प्रथम पहर में दिखाई दे तो सुस्वादु भोजन मिले, कि हमें स्वाद वाला भोजन मिलता है सुनने वालों। अगर दूसरे पहर में दिखाई दे तो रोग हो, तो रोग होने की संभावना रहती है। तीसरे पहर में अगर बाज पक्षी दिखाई दे तो देह पीड़ा, तो हमारे शरीर में दर्द रहता है सुनने वालों। अगर चौथे पहर में हमें बाज पक्षी दिखाई दे तो लंबी बीमारी भोगे, तो हमें कई बार ऐसे रोग हो जाते हैं जो बहुत समय तक चलते हैं सुनने वालों।

सुनने वालों, आज मैं आपको बता रही हूँ कीट पतंग और पक्षियों के बारे में कि जो हमें नुकसान भी होता है और उनसे लाभ भी मिलते हैं। तब आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। अगर हमें बाज पक्षी पश्चिम दिशा में दिखाई दे और प्रथम पहर में दिखाई दे तो कार्य इच्छानुसार कि जो हमने सोचा होता है कि हमारा ये कार्य हो जाए वो हमारी इच्छा के अनुसार हो जाता है सुनने वालों। और दूसरे पहर में अगर हमें बाज पक्षी दिखाई दे तो अग्निकांड, तो आग लगने का डर रहता है। तीसरे पहर में अगर ये पक्षी दिखाई दे तो यात्रा पर जाना, तो हम यात्रा पर जा सकते हैं। अगर चौथे पैर में ये पक्षी दिखाई दे तो किसी से झगड़ा, तो हमारा किसी के साथ झगड़ा हो सकता है सुनने वालों। अगर उत्तर दिशा में ये पक्षी हमें दिखाई देता है, अगर प्रथम पैर में दिखाई देता है काल का ग्रास बने, दूसरे पहर में दिखाई देता है तो धन की हानि होती है सुनने वालों, तीसरे पहर में दिखाई देता है तो संकट ग्रस्त, तो हम पे समझो कोई संकट आने वाला है, चौथे पहर में दिखाई देता है तो धन की प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है सुनने वालों। सुनने वालों, अब हमें गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद फिर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे।

सुनने वालों, मैंने आपको जो ये पंछी और कीट पतंगों के बारे में बताया है, शायद उसमें से आपको कुछ ज़रूर अच्छा लगा होगा। वाणी और पानी दोनों में छवि नज़र आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नज़र आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नज़र आता है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

दोस्तों प्यार की प्यार भरी सॉन्ग आज हम आप लोग को और सुनाएंगे, कुछ शायरी भी आप लोग को हम आज सुनाएंगे और लवली लवली सॉन्ग फन यार नई खंतख तो दिन में फनाफ तख्तक नई खंतक फाइव नई खंतक के प्रोग्राम आज हम आप लोग को सुनाएंगे। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और मोहब्बत भरी प्यार भरी और दिल के धड़कन की और यानी कि बातें शायरी सुनाना है हमारा काम। और बात ये है दोस्तों कि इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज़ थे, जब तुम मिले तब इन लफ्जों को मैंने मिले। तो प्यार भरी शायरी आज हम आप लोग को सुनाएंगे। हम जाते हैं हम तुमको निगाहों में, हम तुमको निगाहों में गर्फ। और इस गीत को इस फिल्म में काम किया है और यानी कि सलमान खान काम किया है दोस्तों। आओ मिलकर सुना जाए और ये क्या है हमारा प्रोग्राम का नाम है मोहब्बत भरी, मोहब्बत भरी प्यार भरी पैगाम।

होता सुनो, आप लोगों ने तो खुद सुना है हमारे दोस्तों, और कहते हैं कि तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है। हमारी बात सुनो दोस्तों, कि तेरे ख्याल से खुद को छुपा कर देखा है, दिल को नजर को रुला कर देखा है। तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तेरी कसम, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरी कसम। मैंने खुद कुछ पल तुझे भुला कर देखा है, और कहते हैं इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरा सुकून, इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरा सुकून। तुम रखो कदम जहां खुदा करे मैं वही जमीन बन जाऊं। तो हम जाते हैं दोस्तों, और एक प्यार भरी गीत, तुम्हारी नजरों में हमने देखा है, कल की आवाज ने हिंदी ट्विंस का ये फिल्म है, और रोहित बच्चिया और प्रतिभा सिन्हा का ये गीत है, आओ मिलकर सुना जाए।

तुम्हारी नजरों में हमने देखा और प्यार में तो एक से एक चीज झलकती है दोस्तों, कभी दांत झलक देते हैं तो कभी आंख में से आंसू गिर जाते हैं। प्यार में बहुत चीज झलक देते हैं कि कहते हैं हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बार पर ऐतबार कर लेंगे, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, हम जिंदगी भर आपका इंतजार कर लेंगे। दोस्तों प्यार में ये सब तो होता ही रहता है ना, कि कहते हैं नजरे करम मुझ पर इतना न कर, नजरे

और ये लड़की बहुत याद आता है, और न सिर्फ लड़की याद आता है दोस्तों, लड़की को लड़का भी बहुत याद आता है, और लड़की को ये लड़का याद आता है तो क्या कहते हैं, लड़का कहते हैं कि तेरे प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, तेरे प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, और उस इंतजार में न जाने कितनों से प्यार किया। दैट वाज अनचोपन से प्यार करने वालों के लिए, लेकिन असली बात यह है, हमने सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो, हमें सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो, हम सिर्फ तुम्हारे हो जाए, हमें इतना मजबूर कर दो। तो ये प्यार भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी गीत हम आपके लिए चलाते हैं, और नेखंत इंद्रिय से इवेंट की ओर हम जाते हैं। फिल्म के नाम है ब्लैकमेल किशोर जी, और क्या कहते हैं कि हमारे दिल के पास आप हो, पल पल दिल के पास।

पल पल दिल के पास और तुम रहती हो, और दिल के पास तो रहना चाहिए हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे मोहब्बत भरी। और लोगों कि कहते हैं बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो, खुद को दुनिया के नजर से बचाया करो। सिर्फ आंखों में ख्याल ही काफी नहीं है, ख्याल में नींबू मिर्ची भी लगाया करो। और प्यार, लोग जो प्यार करते हैं उसके लिए भी हम यहाँ पर कुछ लेके आया है। और कहते हैं आई सनम काश मैं भी पानी की एक घूंट होता, आई सनम काश मैं भी पानी का एक घूंट होता, तेरी लबों से लगता तेरी रग रग में समा जाता, और तेरी चुनरिया उड़ जाते तो हमें कैसा लगता, आप खुद ही सुनिए।

और तेरी चुनरिया क्या हुआ भैया, उड़ गया है कि मैंने मोहब्बत को तो नहीं देखा है दोस्तों, मैंने मोहब्बत को तो नहीं देखा, पर लगता है ये तेरी जैसी होगी। मैंने चीखी है बहुत मिठाइयां, पर मुझे क्या पता था कि तेरी होंठों के लिपस्टिक उनसे भी मीठी होगी। तो जे कोई लिपस्टिक लगाए भैया ओके तो पता होगा कि चिजवा कैसे है। और कहते हैं किस्मत या मेरा इम्तिहान ले रही है, किस्मत ये मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़प कर ये मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया है दोस्तों, पर क्यों बेवफा को वो इल्जाम दे रही है। और जब कोई बेवफा होता है दोस्तों तो ये गीत आपको सुनना चाहिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं निघति निघ्न निघन तक का ये गीत।

0: और चाहा है तुझको और चाहेंगे हरदम। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल फिल्म के नाम है मन नेहन दिन होंदत ए नेहन नेहन तक कहा दोस्तों। और कहते हैं किस्मत जा मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़प कर ये मुझे दर्द से रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा को वही इल्जाम दे रही है। हमारे दोस्तों और प्यार भरी गीतों का और यहाँ पर हम चलाते हैं कि प्यार का अमहता एहसास दिलाने लगे हो तुम, अब तो मुझसे मुझे को चुराने लगे हो तुम, तेरी चाहतों का गया है जरूर इस कदर, हर पल हर जगह नजर आने लगा हो सिर्फ और तुम, कि अजनबी मुझे इतना बता प्यार तो होना ही था।
1: सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई, अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

उस लड़की पे दिल आ गया है दोस्तों, और कुमार शानू ने दिलगी लता जी और इस गीत को सुनाया है दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है और अगला गीत से पहले दोस्तों हम जाते हैं रे कलाम की ओर। हमारे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत भरी रात है और मोहब्बत भरी रात में प्यार भरी गीत बहुत अच्छा लगता है, तो हम जाते हैं देखा तुझे तो हो गया दीवाना, देखा तुझे तो हो गया दीवाना, आ मिलकर सुना जाए देखा तुझे तो हो गया दीवाना।

0: देखा तुझे तो हो गया दीवाना। और दोस्तों हम अपना प्रोग्राम को
1: मित्रों, शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। और आगे मित्रों, किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह ईश्वर के दिल तक जाती है। ये मत भूलिए।

मित्रों, हम लोग जब किसी शादी की रिसेप्शन में जाते हैं तो पैसों का एक लिफाफा जरूर देते हैं। अगर कार्ड पे नो गिफ्ट प्लीज या खेन एम्फलोप नास्तुग्लिफ लिखा भी हो तो भी हम लिफाफा देने जरूरी समझते हैं। पर जब ध्यान करना मित्रों, पर जब अपना कोई अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है और उस वक्त जब हम उसे देखने जाते हैं तो कोई लिफाफा हम नहीं ले जाते हैं, जबकि उस वक्त मरीज के घर वालों को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। साथियों, क्या हम सब मिलकर ये नया रिवाज, नया प्रथा नहीं शुरू कर सकते हैं? अगर आप भी इस बात से सहमत है तो ये संदेश को आप जरूर औरों तक पहुंचाइए। प्लीज जरूर औरों तक पहुंचाइए।

साथियों, इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं? वक्त ने कहा, धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। मित्रों, इस बात को ठीक से समझना और कोशिश करो अपने जीवन में उतारने के लिए।

भाइयों और बहनों, जहां साहस और परमात्मा साथ है, वहां कठिनाइयां व समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मेरा और मेरी पत्नी राधा का अनुभव है।

सुनने वालों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और यहाँ से सुबह का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मैं हूँ संजय और आपके साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे।

और जहाँ खुशी है तो कहीं भी गम भी हो सकता है, तो जहाँ गम है भगवान से विनती प्रार्थना किया जाता है कि उन्हें शक्ति प्रदान करे।

जो तैयारियां कर रहे स्कूल जाने के लिए, तो उनसे कहूंगा कि माँ सरस्वती जो ज्ञान का भंडार देने वाले हैं उन्हें भूलना नहीं।

जैसे कि अभी आपने सुने हरिओम सरन जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन। सुनने वालों, ऐसा हुआ कि प्रश्न गुरु महाराज जी, भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है और उनका ये नाम क्यों पड़ा, बताने के कृपा करे, ऐसा प्रश्न रखे जाते हैं। जैसे कि प्रश्न रखा गया तो उसका उत्तर ये कहा जाता है कि पशुपतिनाथ शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, एक शब्दादिक और एक तात्विक।

जाता है कि शब्दिक अर्थ जब लिया जाए तो पशुपतिनाथ, पशु पति और नाथ तीन शब्दों से और जुड़ा हुआ है, अर्थात पशुओं का पति वह नाथ। पति का अर्थ होता है पथ रखने वाला, कहा गया है कि नानक पथ पति जाइए।

जय माता दी जयकार के साथ ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। सुनो वालो, भारत में एक गांव कहा जाता है मोहनजोदड़ो नाम से, और एक बार ऐसा हुआ कि एक भयंकर बाढ़ आए और वो पूरे गांव वहां से लुप्त हो गया था। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो एक गांव था और वहां पर खुदाई हो रहे थे, यानी कि वैज्ञानिक द्वारा जो हम आर्कियोलॉग कहते हैं, और वहां से भगवान शिव का एक बहुत पुरातन तस्वीर मिली। इसमें भगवान शिव ध्यान के अवस्था में बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर पशु बैठे हुए, अर्थात कहा जाते हैं चित्रित में और स्पष्ट भगवान शिव को पशुओं की स्वामी के रूप में और चित्रित किया गया है। से भी हम देखे कि भगवान शिव के गले में सर्प को अवधारण किया है। और उनका वाहन भी एक वृषभ, यानी कि एक बैल है। केवल भगवान शिव के ही नहीं, सभी धर्मों के अनेक और देवी देवताओं के वाहन पशुओं ही है। जैसे देखा जाए कि सरस्वती माता का वाहन हंस है, देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू, गणपति का वाहन मूषक है, देवी दुर्गा का वाहन सिंह, और रोम का देवता विनस का वाहन कपोत है। नोर्स की देवी फ्रिया का वाहन बिल्ली है।

संकेत है कि पशु परमात्मा द्वारा और रचित इस सृष्टि के अभिन्न वे महत्वपूर्ण अंग है। यही कारण है कि समय और परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार कई बार ईश्वर ने पशु रूप में भी अवतारित लिया।

विष्णु के 10 अवतारों में से मत्स्य, कश्यप और मुवारह अवतार पूर्णताय पशु रूप में ये थे और नरसिंह अवतार आधा नर और आधा पशु रूप में अवतारित थे।

ईश्वर ने तो हमें कितने ही अवसंकेतों द्वारा समझाया है, पशु भी परमात्मा की ही रचा तथा परमात्मा के ही रचना है और उसे प्रिय है।

रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी ने कहे है, कि मम माया संभाव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उप जाया, अर्थात ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है और इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव है, और भगवान ये भी कहते कि वे सभी मुझे प्रिय है, क्योंकि सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। सभी हमारे प्रिय होते हैं, समझ समझ के समझो, ये भी एक समझ है, क्योंकि इसमें हमें किस प्रकार दृष्टि डालना है। जितना चराचर जितना जीव है, कहावत है कि सब भगवान के द्वारा उत्पत्ति भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं।

शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शाम रंग में पिया मोरी रंग दे चुनरिया। शब्दों की ओर ध्यान दें।

आ गया है कि आखिल विश्व मोर उपाया सब पर मोही बराबर ही दया कि सब पर मोही बराबरी दया ये संपूर्ण विश्व मेरे पैदा किया हुआ है अथ सब पर मेरी और बराबरी दया यानी कि बराबर का और दया है।

कवि ने इन्हीं अवभावों को शब्दों में कुछ यूं पिरोया है। उन्होंने इस प्रकार से लिखा है, कि मानो पशु पक्षी लता पदप कीट पतंग सब में प्रभु नित्य वास रहे। सब में उनके अंग कहने का भाव कि इस अवधारा पर श्वास ले रहा प्रत्येक जीव प्रभु का अंश है, इसीलिए प्रभु को अप्रिय है, परंतु ये सभी सत्य ही है। इन सभी जीवों में से मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सर्वोक्त कृत्य है, ईश्वर ने मानव को अपने जैसा ही बनाया है।

संबंधों का कुछ पांच सीढ़ियां होते हैं। देखना पहला होता है, अच्छा लगना दूसरा होता है, चाहना तीसरा और चौथा होता है पाना। ये चार बहुत सरल सीढ़ियां है। सबसे कठिन पांचवा सीढ़ी है, इसे हम निभाना कहते हैं। तो दोस्तों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं औक्तंत भजन प्रोग्राम जो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और अगला भजन जो रोटरडम होपफुली टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति उनके ओर से ये सुंदर सा भजन।

अनूप जलोता जी के आवाज में हम सब सुंदर सा भजन को जो सुने, रोटरडम होपफुली टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोटरडम वेस्ट ब्लॉक बाकरस्ट्रात 46 श्री सरस्वती माता स्कूलन कॉम्प्लेक्स भवन से पंडित मंडली सभापति श्रीमान पंडित राजकुमार महातम जी के ओर से कि जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो, कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं।

गंगा के किनारे। ये हरीशराज रघुवंशी ने ये सुंदर सा भजन को और गाए हैं। अगला भजन जो हम रखने वाले हैं हमारे अख्तुंत भजन प्रोग्राम कार्यक्रम के

शिव ही मेरी स्तुति, शिव ही मेरा ध्यान, शिव ही है मेरे गुरु, शिव को कोठी कोठी प्रणाम। अगला भजन का मांग करने वाले श्रीमती लीलियन मोतीराम जी। श्रीमती लीलियन मोतीराम जी जो अपने ओर से ये सुंदर सा भजन हम सबके लिए मांग किए हैं। दुनिया के हर एक कोना में जहां तक इंटरनेट है ये कार्यक्रम को सुना जा सकता है।

हर हर महादेवा रे देवा, ये सुंदर सा भजन जो स्पॉन्सर किया गया फ्रॉ लिलियन मोतीराम जी के ओर से।

जिनका व्यवहार अच्छे और दिल छू लेने वाला होता है, जिनका व्यवहार अच्छे और दिल छू लेने वाले होते हैं, उनके लिए दुआएं अपने आप निकल आते हैं। हमारे फाहुन का दिरक्सी और सभी स्टाफ लेड की ओर से ये सुंदर सा भजन जो हम अब आपके लिए प्लेयर पर चुन करके रखे हैं।

सुनने वालों, ये सुंदर सा भजन जो हमारे डायरेक्टरी औस्ताफ के ओर से रखा गया। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं और अनूप जलोता जी के आवाज में। सुनने वालों, हमारे अगला भजन जो स्पॉन्सर किया गया है दनहा खै क्नेटल स्ट्रातिन हिंदी प्रचार संस्था परिवार चांद गुरबीन के ओर से। हिंदी के बारे में कुछ भी मानो बात आपको करना है, कैसे पढ़ना है, लिखना है, कैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बारे में आप ज़रूर चांद गुरबीन जी को और मालूमात कीजिए। उनका तार का नंबर है 06 45 09 05 26। उनके ओर से ये सुंदर सा भजन।

आई लव यू प्यार कर छू, जाला माला प्रेम चाला, ये तीन शब्द में प्यार का इजहार किया गया है कि आई लव यू प्यार कर छू, जाला माला प्रेम चाला। फिल्म का नाम महासंग्राम, नेखन तीन नेखन तक में ये पिक्चराइज किया गया है और इसमें स्टार कास्ट है माधुरी दीक्षित, विनोद खन्ना, शक्ति कपूर और संगीतकार जो आपने सुने अलका याग्निक जी। अनस्प्रेकवोर्ड दिसेख्त गिस्त्रन इस फॉरबाई मॉर्गन इस अ मिस्ट्री, मार फंदाग Vandaag is een geschenk. En dit heet het heden. Dus met andere woorden, leef, lach en zing. Maar wees vooral gelukkig.

जी हाँ, आप भी बोलो 1-4-3, 1-4-3 यानी कि 1-4-3, क्योंकि आई लव यू जो अक्षरों से लिखा जाता है, आई यानी कि एक हो जाता है, लव चार अक्षर से लिखा जाता है तो चार हो गए, और यू तीन अक्षर से लिखा जाता है तो तीन हो गया, तो आई लव यू 1-4-3। आगे में आपको कोई चल के कहे दे कि 1-4-3 तो आप जान जाए कि इसका मतलब है आई लव यू। फिल्म का नाम आदमी।

जीना भी क्या है जीना, तेरे होठों के बिना, तेरे आंखों के बिना। फिल्म का नाम कसम पैदा करने वाले की, कसम पैदा करने वाले की म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर खुद बप्पी लहरी है और साथ दे रहे थे सलमा आगा।

My God, Nerula, Nerula. जसपिंदर नेरुला और सोनू निगम के सोनू निगम की आवाज में थोड़ा भोजपुरिया शब्द इसमें भी थे। फिल्म का नाम सन्यासी मेरा नाम, इसलिए आप जा झाड़ के। द एनिग एख्त रेडियो स्टेशन फाहोन रेडियो।

0: हाँ, ये सिके सिके तो हम थोड़ा से यहाँ से रोकेंगे और आपको लेकर चलेंगे थोड़ा से सुनने के लिए सोहर वाला गीत।
1: अरे चाहती के

मंदिर हो म्यूजिक बाय दोस्ती म्यूजिशियन और सोहर के गीत जो हमके सुनाए कि चैती की तिथि रविंद्र भोला सिंह।

0: The BYD Dolphin.
1: आपको यहाँ से लेकर चलते हैं और सुनने के लिए, और क्या मैं सेलेक्ट करके रखी हूँ इस वक्त मुझे भी नहीं पता, चले मिलकर सुनते हैं।

शाबाश शाबाश शाबाश वीरेश जी की आवाज़ पे हमने यहाँ सुने बैठक गाना तो इधर से फिर तुम तक के ये गीत निकाला गया है सलगता बीत के धुन पर ससुर गली जाना है।

0: వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సంప్రభా నిర్విధినం కురు మే దేవ సర్వకార్యషు సర్వదా రుబ్రరు మిల్నే కా మౌకా నహి మిల్ పా రహా అత శబ్దో సే అప్నో కో నమన్ కర్ లేతా హూ ప్రత్యేక వ్యక్తి కిసీ నా కిసీ రూప్ మే శ్రేష్ఠ హోతా హై ఇసిలియే ఆప్కీ శ్రేష్ఠతా కో హృదయ సే నమస్కార్ కర్తా హూ ఫాహోన్ హిందుస్తానీ రేడియో కే సభీ సునే వాలో కో హార్దిక్ సే అభినందన్ కర్తే హై ఔర్ యహాన్ సే జో హమ్ సబ్ ఉపస్థిత్ హో గయే స్టూడియో మే తో శాంతా జీ ఔర్ కొలేఖా సాథీ బబ్లీ జీ భీ ఔర్ పనీల్ కే పీఛే హమారే భాయ్ రాజేందర్ జీ హై సభీ అప్నా అప్నా ఎంట్రీ దేతే హై ఫిర్ ఉస్కే బాద్ మే హమ్ విషయ జో ఆజ్ కా బడే ధమాకేదార్ హై ఉస్కే ఔర్ బడేంగే తో దోస్తో आप पहले शांता जी के सुन रहे हैं, फिर बबली जी को, फिर उसके बाद में राजेंद्र जी को।
1: रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम में या खुशी में साथ दे, रिश्ता वो है जो अपनापन का एहसास दे। सभी का शांता के प्यार भरी राम राम प्रणाम इस ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
2: चुप रहना और अपने काम में लगे रहना भी एक कला है। इस संसार में जिसको भी ये आ गया वो बिना किसी आवाज़ के बुलंदियों पर पहुंच गया। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
3: सबने अपना अपना शेर तो बड़ी जोर शोर से सुनाया, किसी ने चुप रहने की बात कही, किसी ने रूबरू मिलने की बात करी, शांता जी ने अपना सुनाया, लेकिन हम क्या सुनाएं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को जो कि हम आगे सुनाएंगे सबके लिए नमस्कार। और इसी प्रकार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सुनते रहिए, कुछ ना कुछ आज हमारा जो विषय है कश्मीर के ऊपर है। और
0: दोस्तों, कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले हम हर सप्ताह की तरह, जैसे कि जिसका मन अभी उदास है, जो अभी अभी रेडियो को ऑन किए है और जो इस समय ये कार्यक्रम के सुनने के लिए, क्योंकि कितने लोग ये कार्यक्रम अन्य देशों में भी सुनते हैं, वहाँ शायद समय कुछ और होगा, तो सभी के लिए पहले हरिओम सरन जी ने सुंदर रूप से अपने वाणी से और जाकर के वो गीत से हम सबको और हम सब के लिए गाकर छोड़ गए हैं कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े। तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम वो ही गीत चलाते हैं पहले, फिर आज का विषय जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत में काफी संदेश है, पर और भी संदेश है दोस्तों, आप सुनते रहना। हम पहले वही गीत के ओर बढ़ रहे हैं जो हम सभी हर सप्ताह की तरह, तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े।

0: तो दोस्तों अभी हम सब आगे बढ़ने वाले हैं ये विषय के लेकर, पर ये विषय आज जो हमारे विशेषज्ञों है ना, तो विशेषज्ञों ने कुछ और भी संदेश रखे हुए। राजेंद्र जी, इसके बारे में आप कुछ पहले सुनाओ तो फिर हम सब जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेंगे।
1: हाँ, जो आज का विषय है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो कश्मीर है वो एक धरती का स्वर्ग कहा जाता है।
0: धरती का स्वर्ग।
1: हाँ, और जब धरती का स्वर्ग की बात आती है तो कश्मीर में क्या नहीं होता है, फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट सारे होते हैं। केसर जो वहाँ का बहुत ही फेमस और पूरी दुनिया में नंबर वन का जो केसर कहते हैं वो कश्मीर में ही होता है।
0: महाराज इंद्र जी, ये बात है कि केसर आप कह रहे हो, पर केसर बोले तो हम लोग यहाँ कैसे हम जानते हैं शांता, हॉलैंड में
1: सफरान।
0: हाँ, सफरान उसे कहते हैं। दुनिया के वर्ल्ड सबसे ऊंचे क्वालिटी के वही,
1: सबसे ऊंची क्वालिटी का वही होता है। वहाँ के अखरोट, वहाँ का बादाम, वहाँ का नारंगी, मौसमी, सब चीज बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ऊंचाई वाला स्थान है और कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए सब चीज़ें बड़ी स्वादिष्ट वहाँ होती है। उसी कश्मीर के बारे में जब हम आज आगे की बात करेंगे कि वहाँ के राजा जो आखिरी राजा हुए,
0: बहुत अच्छा होता
1: क्योंकि राजा करण सिंह, जब राजा हरि सिंह वहाँ के महाराजा थे तो राजा करण सिंह भी ऑलरेडी उनका राजा करण सिंह की जय बोला जाता था उस समय। इसके बाद देश स्वतंत्र हो गया और फिर सब राजे रजवाड़े सब एक उसमें आ गए, भारत में सब विलीन हो गए। इसी प्रकार का आज हमारा कार्यक्रम जो होने वाला है कश्मीर के बारे में और राजा हरि सिंह के बारे में, उस पर प्रकाश डालेंगे।
0: तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम पहले थोड़ा से उस ओर बढ़े, क्योंकि शांता ने पिटारा भर करके और गीतों को लेकर आए हैं, और हमारे सुनने वालों भी इस बात को जब कहीं मिलते हैं तो वो कहते हैं शांता जो अपना पिटारा लेकर आते हैं, भला बताइए वो कैसा चीज़ है, वो क्या है। तो सुनने वालों, ये बात है कि जरूर एक ना एक दिन ये अवसर मिलेगा आपको शांता का पिटारा से और देखने के, और तथा यानी कि वो कहने के तात्पर्य ये है जो अपना गीतों जो शांता जी लेकर हम सब के लिए खोज खोज करके इकट्ठा करके यहाँ उपस्थित होते हैं स्टूडियो में। तो क्यों ना पहले हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर अभी आज ये तेमा जो है, विषय जो है जम्मू कश्मीर, उस पे जरूर चर्चा किया जाएगा। पर राजेंद्र जी, हमारे सुनने वालों तथा हमारे विशेषज्ञों खास करके संदेश कुछ और भी रखे हैं, तो वो भी सुनाना पड़ेगा। पहले हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
1: जो गीत के बोल है वो है कश्मीर की वादी में मेरी माँ का द्वारा।
0: कश्मीर के वादी में मेरी माँ का
1: द्वारा।
0: द्वारा चलो सुना देते हैं।

0: कश्मीर की वादी में शेरों वाली माँ का द्वारा है। लखबीर सिंह लखा जी ने जो भजन गाया है बहुत ही सुप्रसिद्ध एकदम, उसमें बहुत ही प्रकार से लोगों को सराहनीय हो जाता है, सबको पसंद आता है, यानी सबको पसंद आता है इस प्रकार का जो लखबीर सिंह लखा ने भजन गाया। और कश्मीर का तो होना भी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का जो धरती का स्वर्ग कश्मीर है उसके बारे में तो हर किसी ने अलग अलग प्रकार से अपना बयां किया है। तो इसी विषय में हमारा कार्यक्रम कश्मीर के विषय में जो आज का रहने वाला है, होने वाला है, कश्मीर की जो 10 बातें हैं।
1: राजेंद्र जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कश्मीर के बारे में हम सब आज विशेष बातें रखने वाले हैं, पर पहले राजेंद्र जी कुछ बातें और आए हैं और उन्हें तो पहले हम सब रख दे, ताकि हमारे सुनने वालों इस बात को भूले ना और इस बात को जानना बहुत क्या कहते हैं जरूरी है। अब जैसे कि राजेंद्र जी यहाँ बताया जाता है कि फलों से सीख जो हम सबको मिलता है ना, फल से, तो फलों से जो सीख हम सबको मिलता है कि जैसे कि गुजाबा, शांता जी गुजाबा पता ना क्या?
2: गुजाबा मेरे को पता है क्या है, खुयाफा।
1: खुयाफा उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अमरूद ना,
0: तो उसको बोल अंग्रेजी में गुआवा बोलते हैं, हिंदी में अमरूद,
1: ऐसा। तो फलों से सीख जो हम सबको मिलते हैं कि नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ जाते हैं ना उसे। अब कभी कभी तरबूजा बाजार से लावो, होलांत एक देश है जहां पर तरबूजा यानी कि वातर मेलन ना कि हर समय मिलता है। सूरीनाम एक देश है जहां पर बस ख्रोतफाकांसी में ना मिलता है
2: गर्मी अनुसार।
1: और पर होलांत एक देश है जहाँ पर हर समय आपको और तरबूजा कोई भी फ्रूट कोई भी अपेगो अपल जैसे भाई
2: लगातार मिलते हैं।
1: हाँ लगातार हमारे घर पे पेड़ से जो सेब अपल होते हैं ना, तो अगोरते हैं कि अब फूल ले लिया है, धीरे धीरे फूल से अब जब फल बन गया है और उसका तुराई जुलाई अगस्त में होता है कि हम सब उसे तोड़ पाते हैं ना। पर होलांत एक देश है यहाँ हर समय सब प्रकार के और फ्रूट मिल जाता है। पर कहने के तात्पर्य यह है नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ जाते हैं फलों से, फलों का ना, कच्चा आम जैसे भैल और इस प्रकार के अनेकों और फलों में नमक लगा दो।
0: नहीं जैसे नमक आम में न लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नमक अमरूद में और जामुन में काला नमक, अमरूद में काला नमक लगाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है, और जैसे केले में भी थोड़ा सा नमक लगाने से उसको अच्छा हो जाता है। इस प्रकार आम में नमक नहीं डालो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आम वैसे ही मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है
1: आम जो फलों का राजा। पर राजेंद्र जी ये भी बात है, आम जो अंदर से यानी कि रंग उनका और क्या कहते हैं औरायों को कैसे कहते हैं,
0: ऑरेंज
1: ऑरेंज
2: भगवा भगवा
1: हाँ जो रहे तो जान ले ये मीठा मीठा है। पर कभी कभी कोई कोई आम अपना मनमानी करते हैं तो हरा ही रह जाता है, तो उसे हम नमक लगा कर खा लेते हैं ना।
0: हाँ तो जो हरा रहता है वो कच्चा रहता है।
1: हाँ वो अपना मनमानी करते हैं,
0: फिर उसका अचार भी बना सके,
1: अचार भी बना सकते हैं। पर कहने के तात्पर्य ये है
2: लोटस बनाता
1: है, लोटस शांता जी बनाते थे लोटस, आपको पता क्या?
0: हाँ हम जाने ला
1: तो उसमें क्या डालते थे शांता जी, कैसे बनाते थे उसे?
2: नीमक मर्चा कसरीपो,
1: नीमक मर्चा और कसरीपो के साथ तो बहुत स्वादिष्ट हो जाता था, और उन्हें बना करके घाम में भी रखा जाता,
2: घाम में धर देते फिर खाओ ना,
1: तो फिर खाओ ना। तो ये संदेश है कि फलों से सीखिए, नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ जाता है, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर उगलता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों। और आज का संदेश जो हमारे है, हमारा संदेश जो है कि जैसे कि जीवन में ये चाहते हैं कि हमारे घर से एक बेटा बेटी जन्म लेवे और वही हमारे बुढ़ापा का लाठी बनता ना। शांता जी इसके बारे में आपके क्या ख्याल?
2: बुढ़ापा का लाठी बच्चे
1: जी,
2: बच्चे आज आप तो ऐसे बोले जेके बच्चे ना, और जेके बच्चे नहीं तो
1: तो बुढ़ापा का लाठी नहीं रहेगा,
2: तो बुढ़ापा का लाठी नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा?
1: वही तो यही बात है। बबली जी आप जरा बताइए कि उसके बारे में हम सबको क्या संदेश लेकर आए आज?
3: हाँ जी जरूर, बुढ़ापे का सहारा कौन होता है और कैसे? बुढ़ापे का सहारा बेटा या बेटी नहीं बहू होती है। जैसे कि लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा या बेटी बुढ़ापे की लाठी होती है, इसलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा या बेटी की कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। यह बात सच भी है क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिंदगी अपनी पत्नी के कंधे पर डाल देता है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर की बुढ़ापे की लाठी।
1: बहू क्या बन जाते हैं? बूढ़े सास ससुर की लाठी,
3: बुढ़ापे की लाठी,
1: बुढ़ापे की लाठी।
3: जी हाँ, मेरा तो यही मानना है वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है, कौन कब और कैसी चाय पीते हैं, क्या खाना बनाना है, शाम में नाश्ते में क्या बनाना है, रात को हर हालत में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाए तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए तो पूरे घर की दूरी हिल जाती है, परंतु यदि बेटा 15 दिन की यात्रा पर भी चला जाए तो भी बहू के भरोसे घर सुचारू रूप से चलता रहता है। बिना बहू के सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनकी लाठी ही किसी ने छीन ली हो। वह चाय नाश्ता से लेकर खाने के लिए छटपटा जाएंगे, कोई और पूछने वाला उनके पास नहीं होता क्योंकि बेटे के पास समय नहीं, और अगर बेटे को समय मिल भी जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे यह मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी को सुबह से रात तक क्या क्या देना है, क्योंकि बेटे के चंद सवाल हैं और उसकी जिम्मेदारी ख़त्म। जैसे माँ बाबूजी को खाना खाए, चाय पिए, नाश्ता किए, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वे क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। यह लगभग सभी घरों की कहानी है। मैंने तो ऐसी बहुएं देखी हैं जिसने अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा की, इसलिए मेरा मानना है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। अपनी बहू में सिर्फ कमियां मत ढूंढें, उसकी अच्छाइयों की कदर करें। बहू की त्याग और सेवा को पहचानिए। बेटे या बेटी से पहले बहू को अपना मानिए। मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा बेटा मेरा अभिमान भी छोड़ो, बहू मेरा अभिमान बोलो। बेटी साल में 65 दिन सेवा करेगी, बहू 300 दिन आपके पास रहेगी।

0: तो दोस्तों सुनने वालों, ये संदेश हुआ बबली जी ने लेकर आए अपने और बुढ़ापे का सहारा। तो शांता जी, इस पे आप क्या कहने वाले हैं? बुढ़ापा का सहारा।
1: हाँ, तो ये जैसे बबली ने बताई ना, तब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिलजुल कर रहना, एक दूसरे को समझना, समझाना और समझ के रहना।
0: राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक और गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और आज का विषय जो हमारे बड़े धमाकेदार है, जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के, और जैसे कि अभी सुनने वालों से इस बात को सुना ही चुके हैं शांता जी, कि जम्मू और कश्मीर में थोड़ा अंतर है ना, और अंतर क्या है, पर और भी काफ़ी संदेश है जो हम सब रखने वाले हैं। पहले हम एक और उसी, और क्या कहते हैं उसे राजेंद्र जी, शांता का पिटारा सा निकाला हुआ,
2: हाँ,
0: तो सभी सुनने वालों को सुना देते हैं।
2: ऊंचे पर्वतों पे मैया का बसेरा है,
0: ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे मैया का बसेरा है। हमारे सभी सुनने वालों, जो इस समय खास करके जो इस समय काम भी करते हैं ना, कोई जो जैसे कि हमारे रई इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो इस समय अपने और शिक्षक को लेकर के कार में और चला रहे हैं और ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो आप सभी को लिए भी, और जो इस समय रास्ते पे है, जो अपने गाड़ी में भी ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और ख़ास करके राजेंद्र जी, बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हुआ कि हमारे श्रीमती लक्ष्मण जी ने श्रीमती लक्ष्मण जी ने हमारे सभी कर्मचारियों के लिए, और जा करके ठंडी आने वाले है, और सभी के लिए शाल और मिट्स का और तैयारी करके और ला करके फौन हिंदुस्तानी में रेडियो में पहुंचाए हैं। तो दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हर बार, और हम सब के लिए भी कुछ ड्रिंक आदि भी तैयारी करके, मिठाई आदि लेकर के यहां उपस्थित हो जाते हैं। हम सब जरूर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी, पूरा टीम फाहौन की ओर से, और ऐसे हमारे कार्यक्रम सुनते रहना, जरूर हम नवन संदेश लेकर आपके साथ जुड़े रहेंगे। क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर चलते हैं राजेंद्र जी, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
2: जरूर।

0: Het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: सब लोगों ने बड़े अच्छे से सुना और क्या करना चाहिए न्यूज में, क्या कहां हो रहा है इस न्यूज में, ये सब चीजें रहता है दुनिया का खबर. लेकिन हम अपना खबर जो है सुबह के लिए वो भी कुछ चाहे ना, क्या हमें भी क्या करना चाहिए. तो जब सुबह उठते हैं तो उस समय शहद और नींबू यानी शहद डालकर पीने के 10 लाभ हैं. गुनगुने पानी में शहद डाल के क्या क्या लाभ हैं नींबू के साथ मिला के, ये चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है. लोगों ने कुछ लोग जानते भी हैं और जो नहीं जानते वो जान भी लेंगे. सुबह गुनगुने पानी के साथ शहद और नींबू के नियमित सेवन से सेहत से जुड़ी कई समस्याओं से हमारा हमेशा के लिए निजात मिल जाती है. निजात यानी छुट्टी मिल जाती है बीमारियों से. गुनगुने पानी में शहद के फायदे, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि सुबह एक गिलास गुनगुना पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. शहद को गर्म पानी के साथ लेने से वजन कम होता है और इसके नियमित सेवन से सेहत से जुड़े कई समस्याओं से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है.
3: हाँ राजेंद्र जी, बात यह है कि ये जो आप हम लोग को ये संदेश सुना रहे हैं ना, और जिसे हम गुनगुना के बोले तो हल्का गर्म होना चाहिए और नींबू डाल करके और इससे भी वजन कम होता है.
2: जो लोग मोटे लोग हैं, मामा जैसे लोग हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है.
3: तो मामा को ये तो रोज पीना चाहिए.
2: हाँ,
3: तो ऐसा है तो ये कार्यक्रम जरूर सुनते होंगे मामा जी. तो हाँ, अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान दें. हाँ, क्योंकि वजन इससे भी घटता है. और पर सिर्फ वजन नहीं है, शांता जी भी कुछ कहने वाले हैं. राजेंद्र जी,
4: यानी कि लौ वाटर में होने डाल के और नींबू लमचे.
3: पर इसमें तो संदेश कुछ और है मेरे ख्याल से राजेंद्र.
2: हाँ, अभी और है, काफी संदेश है. हम आपके लिए लेकर आए हैं गुनगुने पानी के साथ शहद का सेवन करने के फायदों के बारे में. अच्छे पाचन के लिए सुबह गर्म पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीना चाहिए.
3: पर राजेंद्र जी ये तो बताओ, पाचन अब थोड़ा अब हम लोगों है कुवाटा, भिंडी डाम, लिफोर्नो और ऐसे सरमक्का,
2: पाचन यानी
3: तो सरनामा में थोड़ा ना
2: भोजन खाते हैं वो अगर पचे ना मोई से तो पेट में पड़ा रहे, तब जब पचता नहीं तो सड़ जाता है तो
3: पचानी का.
2: हाँ, पचानी का
3: ऐसा.
2: तो इसलिए शहद में नींबू मिलाकर पीना चाहिए, या पेट को साफ करने में मदद करता है और लीवर में रस के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे पाचन में मदद मिलती है. नींबू में मौजूद एसिड आपके पाचन तंत्र में मदद करता है और अवांछित विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. इसके अलावा शहद एक एंटीबैक्टीरियल के रूप में कार्य करता है और आपके शरीर में मौजूद किसी भी तरह के संक्रमण को दूर करने में मदद करता है और कब्ज को भी दूर करता है. कब्ज दूर कैसे करें, इस बारे में भी।

0: तो अब ये तो बात बता दो, कबज क्या चीज है?
1: कबज मतलब जैसे हम जो भोजन खाते हैं और वो वही जम जाता है, पेट से साफ नहीं होता, तो रुका हुआ पेट में भोजन को कब्ज कहते हैं।
0: ऐसा
1: ऐसा
0: तो ये भी गुनगुना पानी और नींबू और शहद से इसका भी,
1: हाँ ये मिश्रण जो है कब्ज के लिए तत्काल उपाय है, मतलब तुरंत काम करता है, पेट साफ हो जाता है। या आंत का प्रोत्साहित कर मल त्यागने में मदद करता है। इसके अलावा यह आंत्र म्यूकस में बढ़ावा देता है, म्यूकस यानी उसका लुब्रिकेशन, पेट को हाइड्रेट करता है और सूखे मल को पानी में भिगो देता है। इन सब की एक साथ मौजूदगी से मल त्यागने में मदद करता है। लस्सी का प्रणाली की सफाई इसमें मददगार, लस्सी का प्रणाली में पानी और आवश्यक तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, जिससे आपको सुस्त और रुका हुआ महसूस होना, कब्ज, सोने में परेशानी, उच्च या निम्न रक्तचाप, यानी रक्तचाप का मतलब है जो ब्लड सर्कुलेशन जो तो तेज हो रहा है या कम हो रहा है, तो रक्तचाप उच्च या निम्न नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए,
0: रुद्रक जो कहते हैं ना।
2: और जब कब्ज होती है तो पेट में बहुत दर्द भी होता है,
1: बहुत दर्द। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। सुबह सुबह इस मिश्रण को पीने से लसीका प्रणाली को हाइड्रेट होने में मदद मिलती है, जिससे न केवल सभी उपरोक्त लक्षणों बाकी प्रतीक्षा प्रणाली में भी सुधार होता है। इस प्रकार से इन चीज़ों में सुधार होता है। अब हम बात करते हैं मौखिक स्वास्थ्य में सुधार। जो स्वास्थ्य में सुधार कैसे होना चाहिए, एसिडिटी प्रकृति का नींबू, शहद और गुनगुने पानी के साथ सांसों की बदबू को तुरंत दूर करने में मददगार होता है। नींबू अपनी लार ग्रंथियों को सक्रिय और आक्रामक बैक्टीरिया को मारकर मुंह शुद्ध करने में मदद करता है। सांस में बदबू का कारण जीभ पर सफेद परत का गठन मुख्य रूप से खाद्य और बैक्टीरिया से मिलकर भी है। यह रस इस परत को प्रभावी ढंग से हटाकर सांस की बदबू से प्राकृतिक रूप से छुटकारा दिलाता है और मूत्रवर्धक में रूप में कार्य, शहद में बहुत ही शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल के रूप के गुण होते हैं।
0: ये सब सिर्फ वो
1: सिर्फ सुबह नींबू और शहद गर्म पानी, गुनगुने पानी में डालने से ये सब चीजें ठीक होती हैं।
0: तो राजेंद्र जी, जरूर हमें तो इस बात को पता है कि फाहून हिंदुस्तानी रेडियो हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक अपना अपने ओर से और मौका मिलता है हम लोग के संदेश सुनाने के लिए, और जो अन्य देशों में भी ये कार्यक्रम को सुना जाते हैं, तो क्यों ना हम एक सुंदर सा और गीत के ओर, क्योंकि ये बात है राजेंद्र जी, हमारा जब बुढ़ापा आते ना, तो कुछ बातें हमें हर बार ख्याल आता है कि अब तो बच्चे भी परिंदे जैसे हो गए हैं, अब तो बच्चे भी परिंदे जैसे हो गए हैं, साथ रहकर बड़े होते हैं और बड़े होकर भी उड़ जाते हैं। तो जब उड़ जाते हैं तो आपको अपना सेहत के भी ध्यान देना चाहिए। आप कैसे और क्या कर सकते हैं, जरूर इसमें कुछ संदेश है जो हमारे पास रखा जाता है और उसे आपके लिए हम सब कोशिश करते हैं रखने के लिए। हम सब एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और फिर गीत के बाद ये संदेश पूरा नहीं हुआ ना राजेंद्र जी?
1: नहीं, अभी थोड़ा सा एक बार और रहेगा।
0: तो एक बार और रहेगा ये संदेश, जो जिसमें महत्वपूर्ण बात है, गरम क्या कहते हैं,
2: गुनगुने पानी
0: लव वाटर में मिलाकर नींबू और
2: शहद,
0: शहद कहते हैं राजेंद्र जी,
1: होनिंग
0: को, तो वो उसमें कितना ताकत है, कितना वक्त द बलांगराई का एसेंसिस दरफान और वाचे दरमियाई काम बराई का। तो दोस्तों हम एक सुंदर से गीत के ओर, पहले बबली जी कुछ कहने वाले हैं,
2: क्योंकि उसमें नींबू अपना असर करेगा, शहद अपना असर करेगा और पानी अपना असर करेगा, जब तीनों चीजें मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा।
0: ऐसा होता है तो राजेंद्र जी, ऐसा क्यों ना वही पिटाड़ा में और जो कंप्यूटर में हम लगा चुके हैं, शांता जी जो खोज करके लाए,
1: हाँ, जो गीत के बोल है, ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर आओ माँ, चला देते हैं।

0: ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर आओ माँ। अगर माता जी नीचे उतर आई फिर लोग ऊपर कैसे जाएंगे?
1: इस बात पे जरूर कुछ कहना चाहूंगा कि हिसाब किताब तो सिर्फ ऊपर वाला ही, और हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाला ने ही सही और लगाया करता है। सबको खाली हाथ भेजते हैं और खाली हाथ बुलाया करता है। तो दोस्तों, अभी आप जो संदेश सुन रहे राजेंद्र जी की ओर से कि सुबह में और जा करके जो गर्म पानी लव वाटर से और मिला करके नींबू और शहद जो होनिंग कहा जाता है कितनी कितनी और चीज़ों के लिए लाभदायक है, राजेंद्र जी हम सबको आगे और सुनाइए।
0: आगे का संदेश इस प्रकार है कि इसमें कई प्रकार के संक्रमण को दूर करने की क्षमता भी होती है। नींबू और पानी के साथ या मिश्रित एक उत्कृष्ट आपके शरीर से बाहर निकालने वाला एजेंट के रूप में कार्य करता है, या आपके मूत्र मार्ग को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से पीड़ित महिलाओं के लिए यह रस का एक वरदान की तरह साबित हुआ है, क्योंकि यह संक्रमण को दूर करने में मदद करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है, शहद और गर्म पानी से शरीर में एनर्जी में भी वृद्धि होती है। शरीर से ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होने से शरीर का मेटाबॉलिज्म और कार्य प्रणाली में भी वृद्धि होती है। शहद शरीर के अंगों को ठीक से काम करने के लिए प्रेरित करता है। सुबह में गर्म पानी नींबू के साथ लेने से आप दिन भर ऊर्जावान बने रह सकते हैं। वजन घटाने में मददगार किस प्रकार होता है? शहद और नींबू के साथ गर्म पानी लेने से भूख कम लगती है। शहद और नींबू के साथ गर्म पानी में बड़ी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, जो भूख की इच्छा और शुगर लेवल को कम करके पर्याप्त एनर्जी प्रदान करता है। इस प्रकार से नियमित रूप से सुबह इसका सेवन करने से दिन भर में आपके द्वारा लिए गए भोजन की मात्रा कम हो जाएगी। अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी के साथ शहद और नींबू के साथ करने से आपका वजन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये त्वचा के लिए भी लाभकारी है। त्वचा यानी
1: कि हमारे चमड़े।
0: हाँ, त्वचा के लिए नींबू के लाभ अनगिनत हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें मौजूद क्लेंजिंग तत्व रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है, नई रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। पानी और शहद का मिश्रण आपकी त्वचा के लिए एक अनूठा दृढ़ जीवाणुरोधी और कोलेजन बढ़ाने वाले गुण होते हैं। इसलिए अगर आप स्वाभाविक रूप से चमकदार त्वचा चाहते हैं तो यह पेय आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। पोषक तत्व और विटामिन से भरपूर शहद और नींबू के गर्म पानी में कई जरूरी एंटी ऑक्साइड विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी मौजूद होता है, इसलिए इसके सेवन से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, साथ ही यह वजन कम करने में सहायक होती है। रोग प्रतिरोधी क्षमता में मजबूती, शहद का सेवन शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद, इसलिए डॉक्टर हमेशा इसके सेवन की सलाह देते हैं। शहद के साथ नींबू और गुनगुने पानी के नियमित सेवन शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। शहद और नींबू में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स और कई पोषक तत्व शरीर को मौसम बदलने के साथ होने वाले संक्रमण को भी दूर रखने में मदद करता है। इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा जो मिश्रण है तीन चीज़ों का, पानी यानी गुनगुना पानी, शहद और नींबू, तो ये सब इतनी चीज़ों में मदद करता है। तो जो लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं करते आए हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं इस प्रकार से अपना। तो संजय जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे इस बारे में?
1: जरूर राजेंद्र जी, पूछना तो ये है कि जरूर ये संदेश जो आपने दिए हैं ना, हमारे सभी सुनने वालों इससे जरूर कोई ना कोई और लाभ उठाए, ताकि हमें छोटा सा चीज है ना, कोई मंगा दवाई नहीं है।
2: बिल्कुल,
1: कोई मंगा दवाई, राजेंद्र जी शांता जी का माइक ऑफ है, कोई मंगा दवाई नहीं है। और इससे कितना आसानी से और कितना चीज से हम सब अपने शरीर अपने में बदलाव ला सकते हैं ना,
2: फायदादार है। हाँ,
3: क्योंकि सब चीजें घर पे मौजूद होती हैं, घर में मिल जाती हैं, बाहर से लाने की भी नहीं जरूरत।
1: तो अगर दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान देना, और राजेंद्र जी जो इस समय पैनल पे दूसरा गीत के रखने वाले हैं, पर आज का विषय जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का राजा भी जिनका, और राजेंद्र जी कितने साल के हुए राजा वहाँ का?
0: राजा जो महाराजा करण सिंह है, राजा हरि सिंह, उनके जो पिताजी राजा हरि सिंह, उम्र 96 ईयर हो चुका है।
1: 96 ईयर,
0: और अभी भी वो अच्छे से चलते फिरते हैं, बड़े सब काम करते हैं। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं जो कि अभी भी सुचारू रूप से सब अच्छे ढंग से चलते हैं। जम्मू कश्मीर में भी है, हरिद्वार में, पूरे भारतवर्ष में उनके मंदिर
1: मंदिरों बनाए हैं
0: बहुत।
1: और जो जिनका, और हम अभी उसके बारे में जरूर सुनने वाले, पर बबली जी मैं देख रहा हूँ आप भी कुछ कहने वाले हैं।
3: हाँ जी जरूर, एक छोटा सा संदेश है। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछोना होगा, साथ होगी दोस्तों की यादें और एक शमशान का कोना होगा, और वहाँ लिखा होगा मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते।
1: तो ये तो पूरा सत्य है, और हम सब उस पे जरूर इन बातों को, सुंदर सुंदर संदेशों को जरूर कार्यक्रम में रखते हैं। शांता जी कुछ आप कहने वाले थे, जम्मू कश्मीर कब जा रहे हैं आप?
2: जम्मू कश्मीर अगर बुलावा होगा तो जाऊंगी, पर जम्मू कश्मीर में वो श्रीनगर कहते हैं ना,
1: श्रीनगर
3: कश्मीर में,
2: कश्मीर के श्रीनगर। और क्षीर सागर कहाँ पे, वहाँ पे भी है?
0: क्षीर सागर भगवान विष्णु लोक में है, जहाँ पे दूध का सागर है, जैसे हमारे इस धरती इस भूमंडल में पानी का सागर है, वैसे ही विष्णु लोक जो है, विष्णु लोक में वहाँ दूध का सागर है, इसलिए क्षीर मतलब दूध, उसका सागर है, दूध का सागर है, जहाँ भगवान विष्णु अपने शेष नाग की सैया पे लेटे रहते हैं, उसको क्षीर सागर बोलते हैं।
1: और वहाँ बस शांता जी आपका कोई इरादा थोड़ा है उधर जाने का?
0: अभी तो नहीं होगा
2: अगर जाना हो तो जरूर जाऊंगी।
1: और दोस्तों हम अगले गीत की ओर जरूर बढ़ने वाले हैं, अभी जो हमारा विषय है उसके बारे में राजेंद्र जी हम सबको सुनाने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में। पर पहले उस ओर बढ़ने से पहले इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है ना, ये रेडियो जो हम सबको ये अवसर में देते हैं, डायरेक्टर और जो हम सबको ये अवसर देते हैं, और कार्यक्रम जो यहाँ से हम लोग का ग्रुप जो है जिसमें हम सब इकट्ठा होकर के और कार्यक्रम बनाते हैं ज्योति का प्रकाश। और ज्योति का प्रकाश का लक्ष्य भी यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा और प्रकाश आ जाए। तो यही आशा रखते हुए हम सब हर बार, और हमारे विशेषज्ञों जो भारत देश से और यहाँ हॉलैंड से भी जो हम सब के लिए तेईमास खोज खोज करके रखते हैं, भाई संजय शर्मा जी जो दिल्ली पहाड़गंज से, भाई रिंकू और कालिया जी जो उत्तम नगर द्वारका से, मोहन गार्डन से हॉलैंड देश में, रत्ना जी जो दनहाक से हम सब के लिए कार्यक्रम रखते हैं और विषय खोज कर और रखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र जी गीत की ओर हम बढ़ेंगे, गीत के बाद में आज का विषय उस ओर छलांग लगा देंगे।

0: चंचल जी ने भजन गाया है, बहुत ही अच्छा भजन वो गाते हैं, गाते थे, अब तो रहे नहीं, अभी पिछले साल चले गए बेचारे, लेकिन उनके भजन अमर हैं और सब लोग उनको बड़े प्रेम से सुनते हैं आज भी। अब हम अपने विषय की ओर चलते हैं कि कश्मीर की जो 10 मेन बातें हैं पहले वो करेंगे, इसके बाद वहाँ के राजा की बात करेंगे। कश्मीर के बारे में 10 वाक्य। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग होने के अलावा यह अपनी खूबसूरत वादियाँ, जंगलों, नदियों और फलों के पैदावार के लिए मशहूर है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम ही लगती है, क्योंकि इसकी बहुत से विशेषताएं हैं जिनको इस छोटे से निबंध में बयान नहीं किया जा सकता। जो हमारा कार्यक्रम अब बच गया है, इसमें क्या हम इस कश्मीर के बारे में बोलें, क्योंकि बहुत बड़का बात रहा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि छोटे से समय में ही बड़ी बात हो जाए तो क्या कम है।
1: बिल्कुल एकदम राजेंद्र जी, क्योंकि कश्मीर के और एक उसे कहा जाता है दुनिया का स्वर्ग, ऐसा हाँ, कितने लोग भी कहते हैं।
0: परंतु आइए जानते हैं कश्मीर के बारे में जो 10 प्रकार की लोग बात करते हैं। नंबर एक बात है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, जैसे कि संजय जी आप कह ही रहे हैं धरती का स्वर्ग है, यह राज्य भारत का अभिन्न अंग है। और नंबर तीन बात जो है, कश्मीर का भूभाग सबसे बड़ा है। चौथी बात इसमें आती है कि कश्मीर को भारत का मुकुट भी कहते हैं। इसके इतिहास बेहद प्राचीन हैं, कश्मीर का इतिहास सबसे पुराना है। मुगल शासक जहांगीर ने कश्मीर को परियों का देश से संबोधित किया था। और नंबर जो सात बात है, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। गुलमर्ग को सुंदर और सुगंधित पुष्प इसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। जो गुलमर्ग एक जगह है वहाँ पे पुष्प बड़े सुंदर हैं और सुगंधित पुष्प है, खुशबूदार पुष्प है, फूल यानी पुष्प यानी फूल। यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में ही है। डल झील देश और विदेश के नागरिकों को आकर्षित करती है। डल झील है जो, उसमें विदेशी नागरिक बहुत से आते हैं, उसको सब लोग देखते हैं। कश्मीर भारत का सबसे एक और बेहतरीन राज्य है। यह उत्तर भारत में झेलम नदी की घाटी पर स्थित है। कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग तो कहते ही हैं, लेकिन लोग इस स्वर्ग को देखने से देश विदेश सब जगह से आते हैं। ये सभी मौसम में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसमें गर्मी हो, सर्दी हो, बर्फ़ पड़ी हो या कैसे भी मौसम हो, सब में अच्छा दिखता है। गर्मियों में कश्मीर में हरियाली देखने को मिलती है, गर्मियों में भी हरा रहता है, और सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखती है। यहाँ पर जब जो सेब है उसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, और पूरे देश में तो भारत में तो जाता ही, विदेशों में भी इसका सेब जाता है कश्मीर से है। और मैंने देखा है कि कश्मीर में जो जंगल है, जंगल में भी सेब होते हैं।
2: लेकिन कश्मीर के शॉल भी बहुत मशहूर हैं, पश्मीना शॉल।
0: हाँ, उन जंगलों में पश्मीना शॉल के, पश्मीना जो बनता है, पश्मीना एक रिंग होती है जो उसके बीच से पूरा शॉल निकल जाए तो
2: हाँ जी, हाँ जी।
0: और कश्मीर में घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है, बहुत लोग इसमें घूमने के लिए आते हैं और घूमने लायक जगह है।
1: राजेंद्र जी, मैंने नहीं समझा, मैं इस बात को नहीं समझा, क्योंकि आपने दिखाया कि उंगली में जैसे कि कुछ क्या उसके बारे में कुछ।
0: हाँ, उंगली में जो दिखाया रिंग नहीं होती जो उंगली में।
1: हाँ हाँ जी,
0: अंगूठी।
1: हाँ जी,
0: उस रिंग से जो सॉल है,
1: यानी कि रस्सी निकाल सकता उतना पातर
0: जो सॉल है।
1: हाँ,
0: कश्मीर का।
1: हाँ जी,
0: वो उस रिंग से निकल सकता है, यानी इतना पतला और इतना
1: पातल रस्सी।
0: हाँ,
2: क्योंकि कश्मीर के शॉल बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है।
1: ऐसा बात है।
0: पश्मीना जो कश्मीर का पश्मीना है,
1: पश्मीना
0: वो पश्मीना ही निकल सकता है।
2: शॉल का नाम है पश्मीना।
0: हाँ। और गुलमर्ग की खूबसूरती के कारण इसे कश्मीर की जान भी कहा जाता है। गुलमर्ग जो एक जगह है उसकी खूबसूरती बहुत है। कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल होने के साथ साथ यह सर्दियों से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इसको कुछ विशेषताएं और खूबसूरती का कारण बहुत प्रसिद्ध कर जाती है। कुछ कारण हैं इसे प्रसिद्ध जो बनाते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे केसर, केसर यहाँ का बड़ा फेमस है, सिकारा, मौसम यहाँ का बड़ा अच्छा, सेब और सूखे मेवे। सूखे मेवे में जैसे बादाम है, अखरोट है, और
1: मेवा कहते हैं ड्राई फ्रूट ना,
0: ड्राई फ्रूट्स, हाँ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो कश्मीर में होते हैं। और यहाँ का गुंडोला, गुलमर्ग में गुंडोला होता है, और इस प्रकार से कश्मीर और भी खूबसूरत इन चीज़ों से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि कश्मीर में कौन सा फल प्रसिद्ध है, जो यहाँ का फल है वो दुनिया में कौन सा प्रसिद्ध है। तो यहाँ के सेब दुनिया भर के मशहूर हैं, यह अपनी सेब,
1: सेब कहते हैं वो एप्पल,
0: एप्पल।
1: पर राजेंद्र जी, हॉलैंड में तो रंग बिरंगी, कभी एल स्टार तो कभी गोल्ड स्टार की क्या क्या नाम है शांता, ढेर सारे ना।
0: जो तो वहाँ का जो वहाँ का है सेब, वो हर प्रकार का सेब वहाँ रहता है,
1: वो सब प्रकार,
0: सब प्रकार का। यहाँ के सेब दुनिया भर में मशहूर हैं, यह अपने फल उत्पादन, सेब जो है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध फल है। यह राज्य भारत में स्ट्रॉबेरी उत्पादन के रूप में भी उभर रहा है, स्ट्रॉबेरी में भी यहाँ आगे हो रहा राज्य बहुत ज़्यादा। अत्यधिक मांग के और उत्पादन के कारण युवा अपनी लाभदायक आजीविका के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती में उद्यम कर सकते हैं, यानी स्ट्रॉबेरी की खेती में अभी लोग इस तरफ जा रहे हैं। सेब तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन स्ट्रॉबेरी में काम चल रहा है।
1: स्ट्रॉबेरी बोले तो
0: स्ट्रॉबेरी,
1: ओके, ऐसा
0: वो लाल लाल जो,
1: हाँ जी,
0: यहाँ तो बहुत मिलती है,
1: यहाँ तो बहुत मिल जाता है।
0: तो कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर?
2: डोगरी,
0: हाँ, अधिकतर कश्मीरी डोगरी बोलने बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कश्मीरी डोगरी और हिंदी आधिकारिक भाषाएं होंगी। आगे जो भाषाएं होंगी यहाँ पे हिंदी होगी, अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत बोली जाएगी, और डोगरी तो है ही है, लेकिन कश्मीरी भाषा में पुरानी जो उर्दू बोलते हैं लोग वो भी थोड़ा सा रहेगी। अब प्रश्न है कि कश्मीर में लड़की को क्या कहते हैं?
1: लड़की को
0: सभी राज्यों ने अपनी भाषा है, सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषा है, और किसी वस्तु विशेष को स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कश्मीरियों में एक लड़की को कूर कहा जाता है,
1: ऐसा
0: जी। इस प्रकार से कश्मीर का जो इतिहास है अलग अलग प्रकारों से है। कश्मीर की बात करें तो क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़े, और फिर हम लोग कश्मीर की बातें आगे भी करते रहेंगे।
1: जरूर राजेंद्र जी।
0: कश्मीर जम्मू में ही वैष्णो माता जी का मंदिर है, और वहाँ के जो भजन है बड़े प्रसिद्ध हैं, तो उसी को क्यों ना चला दिया जाए।

0: तो काफी नजदीक हो गया, लेकिन लागी छूटे ना अब तो सनम। ये एक हमारा जो गाना है वो बड़े ही फेमस है, वो जैसे ही इस गाने की तरफ हम बढ़ते हैं सबको पता चल जाता है कि ये लोगों का समय जो 2 घंटा है वो पूरा हो चुका है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें इस बात से पता चल जाता है कि कार्यक्रम अपने समाप्ति के सीमा पे आकर पहुंच चुके हैं।
0: तो चला देते हैं लागी,
1: चला देते हैं राजेंद्र जी।

उनको हीरे मिल गए जिनको हीरों की चाहत थी, और वो खुद हीरे बन गए जिनको गोविंद की चाहत थी। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।

फूलों की तरह महकते रहो और सितारों की तरह चमकते रहो। आपके साथ दी आपको हम दिल से धन्यवाद कहती हूँ। साथ देने और सुनने के लिए आपको धन्यवाद। सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना। तो इसी प्रकार हम भी रेडियो से कभी छूटेंगे नहीं, चाहे तो कुछ भी हो जाए, चाहे जिया जाए या रहे, लेकिन रेडियो के साथ हम समय हर समय बने रहेंगे। हर बार की भांति अगली बार भी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी श्रोताओं को जो हमारे इतना प्रोग्राम साथ देते हैं सुनने के लिए और बड़े प्रेम से सुनते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज का कार्यक्रम में हमारे सहयोगी साथी और जा कर के समता खेमाई जी, बबली आसरा जी, राजेंद्र सिंह जी, अब मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा जरूर ये रखता हूँ कि कुछ ना कुछ संदेश आप तक पहुँचा होंगे। हम ये बस यही कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे अच्छे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। बस यही जिंदगी है। नमस्कार दोस्तों।

हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। राजेश शिवनंदन जी को यहाँ आकाश में लाया गया है हम सभी के वास्ते, जो हम यहाँ से सुने श्रवण की है। मेरे प्यारे सुनने वालों, हम देखे कुछ कुछ और होना था, कुछ और हो गया है। खैर, होता है, होता है, होता है, होता ही हो जाता है। जिससे हम नहीं सोचते वो भी हो जाता है, पर उसकी कोई मायने नहीं रखता। चल चल रे मुसाफिर, शर्विन शर्विन के आवाज में बैठक गाना फॉल्यूम इन से आपके लिए यहाँ से अभी चलाया जाएगा। हंग हैथ खदू आंद कपस्टॉक, हंग हैथ खदू आंद कपस्टॉक, फेह ये सोरखन आंद मात मोतन एन हास्तन हुफन हीर नित। लाइस्टर लाइस्टर नार फाउन यूनिस्तानी रेडियो एन खनित मैंने लिफो

मिसाल लाजवाब पर जिस सिवनंदन जी की आवाज में और कहते हैं कि वच सख्त बे यसेल्फ वच सख्त बे यसेल्फ वच फिंट खत ओवर योर वच गिफ्ट क्राइज टेरुग डेल योर लिफ्ट एंड वर्ट्रो.

0: एक तरफ से दे दो प्यार और दूसरा तरफ से ले लो प्यार। सुनने वालों की खिदमत में अदाबर्स नमस्कार। आज जबकि मंगलवार है, मई के 19 तारीख, जो बीमार है, लाचार है, खास करके हॉस्पिटल के अंदर है, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। जिनके घर में शादी या सालगिरह है, फाहों रेडियो के फुल टीम के तरफ से मुबारकबाद बधाई पेश हो। जो लोग इस वक्त सफ़र पर जा रहे हैं, सफ़र मुबारक हो। जो लोग गैर मुल्क से यहाँ होलंद में आए हैं, उसको मैं खैर मकदम कहती हूँ। हो सकता है कि किसी के घर पर कोई दुख की घड़ी आन पड़ा, तो यकीनन हम आप सबके गमी में शरीक है। आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या इंतज़ार कर सकते हैं? इश्तिहारे कुछ मिले जुले नगमे, कुछ नए और पुराने, सब मिला जुला कर कोशिश करूँगी 3 बजे तक आपकी खिदमत करने को। खिदमत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हाजिर है खुद मैं बीबी साहिबा रहीम बख्श। 3 बजे तक प्रोग्राम को सुनते रहना। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हम प्रोग्राम को पेश करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सिलेक्शन आप सुनेंगे।
1: मैं जिंदगी

मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सेलेक्शन सुन रहे थे। इस बार जो गीत आप सुनने को जा रहे हैं, गाने वाला है मुकेश और साथ में है आशा भोसले।

और दिल बहलता है आपके आ जाने से। अभी आपने साधना सरगम और मोहम्मद अजीज से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहुन के मंगलवार की शाम की प्रोग्राम में। इस वक्त देखा जाए तो 6 मिनट बाकी है 1:30 बजने में। आप फाहुन रेडियो पर चुन हैं।

तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि सारा जहां मिल गया। अभी आपने लता मंगेशकर और साथ में पद्मश्री मोहम्मद रफी से गीत सुन रहे थे।

चुनरी चुनरी आ जा न बोले मेरी तेरी कसम, आए जवानी सर पे मेरे, बोलो भी क्या करूं जवानी पे रहम। अभी आपने अभिजीत और साथ में देखा जाए तो अनुराधा से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहुन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। प्यार करने वाले, प्यार करने वाले न महलों में रहते हैं, न झोपड़ियों में रहते हैं, न दुनिया से डरते हैं और न धन दौलत पर मरते हैं। प्यार करने वाले तो आँखों से कहते हैं और सांसों की धड़कन से सुनते हैं।

मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। भी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी से गीत को सुना।

अपने साजन के द्वार चला हूँ। अभी आपने अलका याग्निक से गीत सुन रहे थे, फिल्म का नाम है खलनायक। तेरे आँखों के गहराइयों में क्या क्या नहीं देखा मैंने, क्या हुआ था मुझे जो तुम पे सब कुछ लुटा दिया मैंने।

आओ ऐसे मोहब्बत करे, मर भी जाएंगे फिर जिंदा रहे। अभी आपने ये थी सुंदर गजल सुन रहे थे रेडियो फाहुन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में।

नीले पर्वतों के धारा आई दूर से सहारा भी आपने देखा जाए तो महेंद्र कपूर से गीत को सुन रहे थे, जबकि दो बजकर 13 मिनट व्यतीत हो चुका है।

दो साथी जीवन के जिस दिन बिछड़े मर जाएंगे। अभी आपने मेहदी हसन और साथियों से गीत को सुन रहे थे रेडियो फाहुन के मंगलवार के प्रोग्राम में। अगला गीत की तरफ हम आप सबको लेकर चलती हूँ।

दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया। अभी आपने लता मंगेशकर से गीत को सुन रहे थे। ये आए कहाँ पे, ये आए कहाँ पर, किस्मत ले आए कहाँ पर, ये तो वही जगह है जहाँ हम गुजरे थे यहाँ से।

एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिला। अभी आपने मुकेश से गीत सुन रहे थे, इसमें देखा जाए तो 10:30 व्यतीत हो चुका है। हमारा और आपका साथ सिर्फ 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद रेडियो फाहोन के अनौसर साथी के जरिए से आप बाकी के प्रोग्राम को सुनेंगे।

झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरस का सावन होगा, भी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी लता मंगेशकर से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहुन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। अगला गीत की तरफ हम आप सबको लेकर चलती हूँ, देखा जाए तो गाने वाला है मुकेश जी।

चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। अभी आपने मुकेश और कोरस से गीत को सुन रहे थे।

भौरी जाना पहचान अचून है, इसका मतलब यही होता है कि मेरे हिस्से का प्रोग्राम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने को आया। आज आपकी खिदमत किया खुतमाए बीवी साहिबा रहीम बख्श। आपने दोस्त एक से अभी तक हमारा प्रोग्राम सुना, प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुदरत ने चाहा तो आने वाले मंगलवार को अपना मिलन होगा और हमारे बात रेडियो फाहून के दोस्तों के ज़रिए से आप बाकी के प्रोग्राम को सुनेंगे। तमाम सुनने वालों के खिदमत में खुदा हाफिज़, नमस्कार।

और नाचो बेटी नाचो, ये सॉन्ग है मारी जोसी जमीर, और ये गीत है नाचो बेटी नाचो, और ये है भोजपुरी सॉन्ग। और इसके बाद हम एक और भोजपुरी सॉन्ग के ओर जा रहे हैं, मॉरिशस का ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों। तो हमने सोचा कुछ सुनाए, अभी वो जा रहे भैया माया कर ले मेरी जान, सेगा भोजपुरी सॉन्ग है, और ये भी है का बोले है भैया मॉरिशस का, हो बूढ़ा मत करो बूढ़ा है शैतान, यहां पर लिखा भैया तो हम बोली बता दी, चलो सिरा जाए।

0: कर ले मेरी जान, कुछ भोजपुरी सॉन्ग आज हम लोग आपको मॉरीशस के सुनाते हैं। मजा कर ले मेरी जान, फिर से ना होगा जवान, हो बूढ़ा मत करो, बूढ़ा है और वो है शैतान। यहाँ पर गीत के बाद भैया हम ना बोले ला, उसके बाद हम जाते हैं सोना नोयोन के कौन फुलवा, कौन फुलवा ये भी एक गीत है भोजपुरी का, आओ मिलकर सुना जाए।
1: अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो, अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो, अरे माथा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो, अरे माथा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब घर की आटा गीला हो गई तो।

और कौनो फुलवा के ये गीत है दोस्तों, कुछ आज कुछ और आपको हम सुनाते हैं। सोना नयो गमत और कौन फुलवा का ये जोंग है जो मॉरिशस के लोग इस गीत को गाया है और बहुत खूबसूरत से गाया है। तो आज कुछ एक्सक्लूसिव सॉन्ग आज हम आप लोग को एक घंटा सुनाएंगे और उसके बाद दोस्तों कुछ और सॉन्ग आप लोग को हम सुनाए। तो हम चलते हैं लंगारों के ओर। लंगारो बॉयस है एगो भोजपुरी का और वो है भी मॉरिशस का। आओ सुना जाए ये क्या गाया है।

और हे लंगड़ों के बाद चीत को छोता है। हमारे दोस्तों आज कुछ भोजपुरी सॉन्ग मॉरिशियस को आपको हम सुनाते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाते हैं। और तो आज हम आप लोग को भोजपुरी जोन से मलामाल करेंगे कि कमरवा के कुछ गीत है दोस्तों, और ये कमरवा में क्या क्या होता भैया आप खुद ही सुनिए। ओ काम करवा

काम करवा, ये भोजपुरी सॉन्ग था मॉरिशियस का दोस्तों। अब हम चलते हैं एक भोजपुरी सॉन्ग, वो है हमारा भारत का, इंडिया का भोजपुरी सॉन्ग। अब मिलकर उस सुना जाए।

0: करे खाती जांग के मोटा भइल और सीना के चौड़ा भइल जरूरी नहीं है, दिल बड़ा होके के चाहिए।
1: अपने आप के बहुत बड़ा आशिक समझ ले, चल तो साबित कर।
2: और ऐसा बड़ा नाचे ना माचिस, ये भी भोजपुरी है, ये है इंडिया का भोजपुरी दोस्तों। और आज हम आप लोग को श्री भोजपुरी ही एक घंटा को सुनाएंगे, और उसके बीच में हम जा रहे फिर एक भोजपुरी जो मॉरिशियस का है दोस्तों। आओ सुना जाए ये क्या।

हेलो कमरिया फुला के, और क्या क्या ये गीत को ये आदमी कितने खूबसूरत के गाकर सुनाए हैं। आओ ये गीत को और सुना जाए।

द मैरी मैन विद बिग बाम्बू, आपको याद है दोस्तों, बीते हुए दिनों में सुनाम, जिसमें जब कैरमस लगता था करम कॉम्प्लेक्स पर, तो वहाँ लोग जाकर रेह में खड़ा होकर टिकट खरीदते थे। सुंदर पोपो आते थे, त्रिनिदाद टोबैगो से आते थे गवैया, और ये गीत हमेशा कैरमस पे गाया जाता था। द बिग बाम्बू हम सब मिलकर सुनेंगे।

बिग बाम्बू द मैरी मैन की आवाज में भी आपने सुना, तो सबकी बार हम चला जाते हूँ श्रीनामदेश। और श्रीनामदेश के कौन गोया है, मिस्टर रोमियो दंग कमला कॉम लेट वी गो।

Hi, hi, Kamli, come, let me go. Nobody like to go. आपकी बार आशनी माता दिन. अपन आशनी है दोस्तों हॉलैंडेस का और आशनी फरमाएगा तोरे बंगले आशनी माता दिन के आवाज में.

आशनी माता दिन नजर लागे तेरे बंगले पर। दोस्तों हमम स्टोरीज, हमम स्टोरीज ब्रदर लिव्ड क्या फरमाएंगे, खुद सुनिए।

0: नवा राय
1: राय नवा राय नवा राय एक्सक्लूसिव वॉल्यूम 14 लाठी ना टूटे फसील के आवाज में
2: सुनिए रे हेंड्रिक्स चूज़वा

है, ऐसा ना हो कि लाठी टूट जाए और सांप न मरे, तो क्या होगा दोस्तों? सांप आपको लपेट लेंगे। नो मर्सी चटनी मैच।

हमें सालियता रहना फाउन हिंदुस्तानियों का नाम। दोस्तों अब की बार जो सॉन्ग आप सुनेंगे साहिद वाहिद का म्यूजिक है और समीर का लिखा हुआ सॉन्ग है और एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ खोया खोया चांद लाइक नेवर बिफोर। बाबुल सुप्रियो का सोल वॉइस में आप ये सॉन्ग सुनेंगे।

बाबू सुप्रियो के बाद दोस्तों तैयार हो गया है उदित नारायण एंड अलका याग्निक। अभी तो मोहब्बत की आवाज है, अभी तो मोहब्बत का आवाज है। क्या आवाज है दोस्तों, ये दोनों की मीठी आवाजों में आप सुनेंगे उदित नारायण, पद्मश्री उदित नारायण एंड अलका याग्निक।

0: है मोहब्बत के दोस्तों, है मोहब्बत के दोस्तों, आपको मैं छोड़ देता हूँ मोहब्बत के दुश्मनों। है मोहब्बत के दुश्मनों, आपको मोहब्बत नहीं आता है क्यों दूसरे के रास्ते पर आप, क्यों दूसरे के सड़क पे आप चलते हो? छोड़ दो, एक दूसरे को प्यार करने दो। क्या आप बीच में जाकर और ये मोहब्बत रोक देते हो? ऐसा मत करना चाहिए।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होठों को छूकर।

आपकी बार दोस्तों कृष्ण कुमार कुन्नत या मिस्टर के आवाज में द वॉइस ऑफ लव मिस्टर के इनकी आवाज में आप गीत सुनेंगे।

किया बादलों में, किया बादलों में सफर जिंदगी भर, समीप बनाए घर जिंदगी भर, किया बादलों में सफर जिंदगी भर, जमीन पे बनाए घर जिंदगी भर। मोहब्बत रही चार दिन के जिंदगी में, मोहब्बत रही चार दिन के जिंदगी में, रहा चार दिन का इंतजार नहीं जिंदगी भर। अरिजीत सिंह की आवाज में आप गीत सुनेंगे।

बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आज हम हो गया है फिर से एक और हो जाए शिवानी सिंह का।

और पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग है। अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

और दोस्तों पवन सिंह का ये सॉन्ग है जो आप लोग को सुनाए हैं, और आगे चलते हैं तमन्ना बतिया। तमन्ना बतिया क्यों?

हिदिंगे बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर करेंगे।

0: की एक बरसाती में रहने वाला।
1: और ये सॉन्ग थी दोस्तों मुकेश माइटी मुकेश करोड़ों का दिल चुराने वाला हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में हसरत जयपुरी शैलेंद्र।

लगी जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

और गुजरा हुआ जमाना तो कभी तो लौट के नहीं आता है। और नाइटिंगेल लता का ये ओरिजिनल सॉन्ग थी दोस्तों। और इसके बाद आज हम आप लोग को पुराने गीतों की ओर लेकर फिर चलते हैं। और ये गीत जो है बहुत पुराना गीत है, वसंत देसाई का। और सुना जाए ये गीत, जब ये फिल्म चले थे दोस्तों तो मेरा अभी कुछ नामों और निशान नहीं थे।

और टिम टिम टिम तारों के गीत चले। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला जोन की ओर।

1955 का ये सॉन्ग है, मूवी के नाम है मुनीम जी, मूवी के नाम है मुनीम जी, जिसमें देवानंद ने काम किया है प्राण के साथ में। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं और किशोर कुमार का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

और इसके बाद हम चलते हैं पद्मश्री मोहम्मद रफी की ओर और आशा भोसले की ओर। एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है और डुएट सूरज। दोस्तों हम चलते हैं, आओ मिल के सुना जाए। मूवी के नाम है सूरज नहीं खती होंदत, मूवी का नाम है सूरज नहीं खती होंदत, एंड सेशन सेस्टक का ये सॉन्ग है।

के भवरे करे पुकार, अभी आपको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन पहले लेकर चलते हैं एक बार आता है दिन ऐसा।

और रोज नहीं। अभी आप लोग को हमने सुनाई थी एक गीत, दिल का भंवरे कहीं पुकारा, अनंत देवानंद का ये सॉन्ग है। इस गीत को लेकर हम और चलते हैं।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं एक गीत दोस्तों देखती होंदत ऐसा सुफेर तक का मूवी का नाम है अनमोल घड़ी अनमोल घड़ी मूवी का नाम है महमूद खान ने इस फिल्म में डायरेक्टर थे दोस्तों toen was ik nog niet eens geboren ik weet het niet ik heb deze film ook niet gezien maar हमारे दोस्तों जो है यहाँ पे रेडियो पर वो सब इस फिल्म देख चुका है और हमसे कहा कि जोनी जरूर चलाना तो हम जरूर चलाएंगे आओ मिलकर सुना जाए ये कालम नहीं है दोस्तों ये कुछ और है

लिपी हम उड़ जाएंगे मऊ के नाम है अनमोल घड़ी दोस्तों। और इस फिल्म में इस गीत को गाए हैं शमशान बेगम और सोरेबा अम्बाली वाली। तो ये सब नाम तो हमने अपनी जिंदगी में अभी नहीं सुना है, लेकिन इस मूवी में काम किया है सुरेंद्र नूर जहां, सुरैया सहूर, राजा अनवरी, मुरत एंड लीला मिश्रा का ये सॉन्ग है दोस्तों। हम फिर एक पुराने गीत की ओर जाते हैं। फिल्म के नाम है जाओ लिखती 125 का ये सॉन्ग है दोस्तों। और इस गीत आओ सुना जाए, दिस इज हेमंत।

और बचपन की ये दिनी आपको कभी भुलाना नहीं चाहिए दोस्तों। कभी कभी लोग कहते हैं भूल गया है, लेकिन बचपन की मोहब्बत की जो सम्मन है वो तुम्हारे साथ चलते हैं। अगला गीत की ओर हम चलते हैं। छोड़ दो हमारी आंचल, क्योंकि जब हमारे आंचल पकड़ेगी तो दुनिया बोलेगा कि सरक के गिर न जाए या कुछ और न दिखा जाए।

करेगा दोस्तों। और किशोर दादा का एक और सॉन्ग हम आप लोग को यहाँ पे सुताएंगे, नाइटिंगेल लता जी, और फिल्म के नाम है निमी, और ये लता नहीं दोस्तों, यानी ये रफी नहीं है, लेकिन नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। उरन खटोला मूवी का नाम है।

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यार वो। और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बाद, चोली के बाद क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते, या गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना। नींद में बहुत कुछ हो जाए।

खुशनुमा पति है फरियाद करने वाले और अपनी जिंदगानी बर्बाद करने वाले नालों से खुश दिलों को नाशाद करने वाले माशूक बेवफा को वो याद करने वाले मैं भी तेरे साथ क्यों क्यों रचूंगी मैं भी तेरे साथ क्यों क्यों रचूंगी।

वहां नगर नगर और डगर डगर इश्क की आग लगाती चली। मेरा देश गयो, मेरा पेश गयो, मेरा चैन गयो, मेरी नींद गई। मत तो इश्क की आग मैं पूरी जली और दिल की बीनी को कांग धरी। कल में भभूति को मुंह पे मली और तौबे की कुंडी को हाथ में, यही कहती चली मैं तुझसे मिलूंगी। यही कहती चली मैं।

हर किए की मैंने सजा उठाली, आकाश की नजर कुछ अंजाम पर न डाली। अब याद कमा हुई हूँ दर पर करे सवारी, दबाल यार क्या अब भी रहेगा खाली।

जज्बा किसी की तब मुझको जुस्तजू है, हर दम मेरी जबा पर तेरे ही गुफ्तगू है। हो जाएगी वो पूरी जो मेरी आरज़ू है, तुझसे ही मांगने में अब मेरी आबरू है। चाले से अब मैं

दरबार तपाकर क्या जाऊँ हाथ खाली, मायूस हो हवा कर क्या जाऊँ हाथ खाली, अब शेर दर पे आकर क्या जाऊँ हाथ खाली, उम्मीद दिल में लाकर क्या जाऊँ हाथ खाली, अपनी मुरादें लेके चलूंगी।

हालत बशर की बिगड़ी हुई बयाई, बट्टी हसेर दर से मखलूक को भलाई, अब जेब कुदरत आशान किबरियाई, किस्मत से हो गई है दर तक तेरे रिसाई, खाली नहीं तेरे दर तक फिरूंगी।

हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशी या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9763-2247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

भूल को भी तुझको रफी जी की, मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई, जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निगत इंद्रियों से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं। नहीं किया तो करके देख, और ये है नाइटिंगेल नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे। और निकटीन हंड्रेड का निकटीन फेस्ट का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

कर के देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया, और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंगापुर, ऑल इज गोल्ड, फोर

हट जाओ और दीवाने आए, और कौन सा दीवाना आएंगे, हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। और सुना जाए माइती मुकेश का ये सॉन्ग है।

फन फन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9753523 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और सोनू निगम अलकायंगनी का ये प्यार भरी लवली सॉन्ग के बाद हम चलते हैं उदित नारायण। उदित नारायण जिस बहुत खूबी से इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए ये क्या है।

फोन होम थे हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे सामदनी के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। सामदनी के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

और मैं पल दो पल का शायर रे शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना ये गीत आपको बताते हैं।

और तुम इस तरह से और मेरे जिंदगी में शामिल जरूर होना। तो महेंद्र कपूर का ये एक लाइफ ऑफ नाम है जो आप लोग को हम सुनाएंगे।

आए जानी चमने और तेरा गोरा गोरा बदन में क्या हलचल मच चुका है। ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पर वो फिक्र नाम है वक्त नई खती 965 का।

हम जब सिमट के आप और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला जोंग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर और नाइटिगेल नाइटिगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

सफरी मेरी हम सफरी और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। तुम्हारी नजरी क्यों खफा हो गई और गुस्सा मत कीजिए पद्माश्री मोहम्मद रफी और नायकी ये लता जी का मूवी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरे अरे क्यों खफा हो गई है और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है।

0: और हेमंत दादा का ये मशहूर सॉन्ग है जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कभी न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

जी आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

फरहान हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फरहान के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फरहान हिंदुस्तानी रेडियो।

फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नाट्यूलक वर्क बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत, जो भी रेडियो का काम हो, देन कन्फर्म हो हिंदुस्तानी रेडियो। खास फरमाई से हो जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो इवेंट और खनिशात और हो और गामान हो और गाउमन हो, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार होता है। पर इसके बारे में आप तार करके सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बैंतिनों के लिए फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रोको भी बनाए। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करे अपने इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वरा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं, कुछ नए नए आवाजें आप सुनेंगे हमारे फिल्मी दुनिया बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का। तो जरा दिल थाम के बैठिए, मेरे ख्याल से पहला बार ये आवाज आप सुनेंगे। नाम है इसका गाने वाले का अल्तामाश फरीदी। और क्या गला है, क्या आवाज है, फ्रॉम द एल्बम तेरी आदत अब नहीं। क्या बात है। म्यूजिक बाय इरफान अली और यति चंद्र बयान को लिखा है मुशफ्फर हसन। मिल के सुनते हैं तेरी आदत अब नहीं, अल्तामाश फरीदी। नेम, रिमेंबर द नेम, बराडा नशीसा।

0: जब पिछड़े तो प्यार का एहसास हुआ, मैं दूर क्या हुआ कोई तेरा खास हुआ, करूंगा तेरी हिफाजत अब नहीं, जा जा तेरी आदत अब नहीं, तेरी आदत
1: तेरी आदत अब नहीं, दिल को छू लेने वाला नगमा और सुनाया आप सभी को मशहूर गाने वाला उभरता हुआ कलाकार इस जमाने का और मालिक एक महान आवाज का द ग्रेट अल्तमाश फरीदी के ब्यूटीफुल आवाज में म्यूजिक डायरेक्टर इरफान अली के साथ और अल्फाजे थे मुशर्रफ हसन जी का। अगला बयान एक इसी तरह का दर्द से भरा हुआ बयान है और इस बार लाते हैं महान गायक इस जमाने का द ग्रेट सवाई भट्ट जी के मधुर आवाज में ये 30 सुंदर बयान आप सुनेंगे। संगीतकार और लाइरिक्स हिमेश रेशमिया जी, दिल तेरी याद में रोता है, क्या दर्द है ये गायक के आवाज में।
2: तेरी यादों से भीगा हुआ मेरे दिल का हर एक कोना है, तेरे पहलू में सर रख के जी भर के रोना है,

0: में रोता है, दिल को छू लेने वाला नगमा सुनाया आप सभी को महान गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का डिग्रेट सवाई भट्ट। लिरिक्स और संगीत दिया है महान संगीतकार हिमेश रेशमिया। इसी तरह के एक और नगमा रख चुका हूं प्लेयर में आप श्रोताओं की सेवा में, एक बार फिर महान संगीतकार हिमेश रेशमिया के साथ पर आप सुनेंगे महान गायक सलमान अली के मधुर आवाज में की लम्हा मेरा। द सॉन्ग इज ऑल्सो रिटन बाय मैस्ट्रो हिमेश रेशमिया जी। आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम
1: तुझसे इकरार करता हूँ, दीवानों की तरह तुझसे प्यार कर।

बात है लम्हा मेरा महान गायक इस जमाने का ग्रेट सलमान अली जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना म्यूजिक ऑन लायरिक्स बाय मैस्त्रो हिमेश रेशमिया। अगला बयान तू मिल गया फ्रॉम द एल्बम अलाया। मिल के सुनते हैं तानिक्स बाक्षी के साथ श्लोके लाल के अल्फाजे और गाने वाले है दो जबरदस्त गाने वाले इस समय का हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का फीमेल सिंगर तुलसी कुमार और साथ दे रहा है जबरदस्त गायक इस समय का डिग्री जुबीन नौटियाल जी। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल

मिल गया दो महान गाने वाले इस जमाने का हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का फीमेल सिंगर तुलसी कुमार जी और साथ दे रहा था महान गायक इस जमाने का द ग्रेट जुबिन नौटियाल म्यूजिक बाय तानिष्क बख्शी और अल्फाजे थे श्लोके लाल का पाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है यारो कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स इस जमाने के आप सुन रहे हैं लेकिन उससे पहले कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए तो कुछ ताजे ताजे शेर्स भेजे हैं यारों का यार भाई भूपेंद्र जी डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई जो मैं आप सभी को कोशिश करूंगा सुनने को गौर फरमाए अर्ज किया है यारों की तेरी मुस्कुराहट मेरी पहचान है तेरी मुस्कुराहट ही मेरी पहचान है तेरी खुशी मेरी जान है कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी बस इतना समझ ले

रिश्ते भी अजीब होते हैं यारो, सब अपने अपने नसीब होते हैं, रहते हैं जो निगाहों से दूर, रहते हैं जो निगाहों से दूर, वही दिल के बस करीब होते हैं। क्या बात, हर दुआ कबूल नहीं होती है यारो, हर आरजू भी पूरी नहीं होती है यारो, जिनके दिल में आप जैसे दोस्त रहते हो, जिनके दिल में आप जैसे दोस्त रहते हो, उनके लिए धड़कन भी जरूरी नहीं होती। क्या दुनिया में बहुत गम मिलेंगे, सच मानो अच्छे दोस्त कम मिलेंगे, जिस दोस्त सब साथ छोड़ दे, जिस मोड़ सब साथ छोड़ देंगे, जिस मोड़ पर सभी साथ छोड़ देंगे, उस मोड़ पर इंतजार करते हैं एक जिगरी दोस्त। यादों के सहारे ही वक्त कटते हैं, बातों के सहारे ही हमारा दिल बहलता है। खुद को अकेला मत समझो दोस्त, खुद को तू अकेला मत समझो दोस्त, आपको भी हर पल कोई याद करता है। आखिरी शेर, दोस्त को दोस्त का इशारा याद रहता है, हर दोस्त को अपना दोस्ताना भी याद रहता है। कुछ पल सच्चे दोस्त के साथ तो गुजारो, कुछ पल सच्चे दोस्तों के साथ तो गुजारो, वो अफसाना मौत तक याद रहता है। सही बात है, सही बात है। तो ये था कुछ शेर्स हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। मजे लेते रहना जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचते रहे, और इसी तरह हम लोगों को आप साथ देते रहना। आप है तो हम भी है यारो, एक अति सुंदर बयान रख चुका हूं प्लेयर में, और इस बार लाते हैं इस जमाने के द क्वीन ऑफ मेलोडी श्री श्रेया घोषाल जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे सुकून। महान संगीतकार लीला संजय लीला भंसाली का कंपोज किया हुआ ये अति सुंदर बयान करार।

कंपोज्ड बाय संजय लीला भंसाली जी, और सुनाया ये थी सुंदर बयान करार इस जमाने का क्वीन ऑफ मेलोडी श्रेया घोषाल जी। इसी तरह से कुछ नए नए सॉन्ग्स सेलेक्ट किया हूं आप श्रोताओं के खिदमत में या शोमी लेकर के, आप सभी को जरूर पसंद आते होंगे क्योंकि ये सभी बिल्कुल नए नए सॉन्ग्स है। खुदा तेरा भी फ्रॉम द मूवी कर्तम भुक्तम, अति सुंदर बयान कंपोज्ड एंड रिटन बाय शबीर अहमद, और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने का द किंग ऑफ मेलोडी सोनू निगम जी, खुदा तेरा भी है।

तेरा भी है, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुना दिया आप सभी को द ग्रेट द किंग ऑफ मेलोडीज जमाने का मैस्ट्रो सोनू निगम जी, शबीर अहमद का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, कंपोज बाय द मैस्ट्रो हिमसेल्फ, और अति सुंदर बयान को भी लिखा है शबीर अहमद जी। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं इस जमाने का उभरता हुआ कलाकार द ग्रेट अंजना पद्मनाभम जी के मधुर आवाज में। अति सुंदर बयान आप श्रोताओं के सेवा में मैं पेश करने वाला हूं, मिलकर सुनते हैं। इट्स अ लाइव रिकॉर्डिंग।

0: well done.
1: इतना पक्का गाती हो, इतना कड़क.
2: ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग, लाइव रिकॉर्डिंग था. मशहूर गाने वाली उभरता हुआ कलाकार है इस जमाने का, ग्रेट अंजना पद्मनाभम. तो हमारे प्रिय श्रोताओं, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है, तो आज के मेरे इस के कार्यक्रम में आखिरी बयान आप सुनेंगे, और वो सुनने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने का मशहूर गायक डेग्रेट अतीफ असलम जी के मधुर आवाज में. ब्यूटीफुल सॉन्ग, न्यू सॉन्ग है उनका, कंपोज बाय नवीद नशाद, और लिखा है अति सुंदर बयान को खलील रहमान जी. तुम्हारी चुप, तो चुप नहीं होते हैं लेकिन होना पड़ता है कभी कभी. मिलके सुनते हैं फ्रॉम द ग्रेट जेंटलमैन अतीफ असलम.

Beautiful song, wonderful song, Tum Hari Chup from the album Gentleman. Mahan gayak is zamane ka great Atif Azlam ji ke madhur awaaz mein Naveed Najat ke sangeet aur likha hai ye ati sundar bayan ko Khalil Rehman ji. तुम्हारी प्रिय प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया. यही आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ यारों की जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये आशा उम्मीद है कि आप सभी को मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम जरूर पसंद आया हुआ होगा. अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मिलते हैं फिर आप सभी से आवाज के जरिए. तो मुझे आप सभी इजाजत दे, जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूं यारो. हम तो जाते अपने घर सब

राम राम मेरा सलाम मेरा प्रणाम बाय बाय लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट और अगर जिंदगी ने साथ दिया तो मिलते हैं आप सभी से आने वाले दिनों में।

Tanii Radio ka program aap shrotaon ki seva mein live broadcast hai. हिंदुस्तानी रेडियो इस्तेमाल इंटरनेट के लहरों द्वारा faunfm.nl पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। हम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनातिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंते सुलोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें इश्तिहारे, तो या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार, तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। जो भी रेडियो का संदेश हो ना, अपमान पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी की फाइट सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी पहले फन मांडा टॉट फ्राइडे फन 9 uur is morgens tot 5 uur s middags op de volgende telefoonnummers kantoor 073562247 of studio Katarka number 073262077. तो जो भी रेडियो का काम होना, थैंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेन फन हार्ट वेलकम। हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप है तो हम लोग है ना। बेंट यू नो खेल फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। Recent hebben we ook nog onze eigen karaoke team. Dus blijf ons volgen via social media en ook via onze programma's. तो आप भी आकर इस छोटा और मोटा सा जो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार है ना, उसमें आप भी आकर शामिल हो जाए। सभी जानकारी न्यूज सीव तक डिफेंसेस तक 2027 फिर तक पर आप तार करें एंड फ्रांक द मेस्ट्रो जॉनी नंबर वन। एकदम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे टॉट फिल्म मैं तेरे लिए, जो रिलीज किया गया था 1988। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मीनाक्षी शेषरारा जी के साथ, और नूतन जी भी इसका फिल्म में काम किए हैं। संगीतकार बप्पी लहरी के साथ है और सभी गाने लिखा है देवानंद का छोटा भाई श्री विजय आनंद जी ने। तो कुछ नगमे रह गया था सुनाने के उस फिल्म में से, तो हम एक अति सुंदर बयान मैं रख चुका हूँ प्लेयर में आप श्रोताओं के नाम पे। जाने से लगते हो मैं तेरे लिए बप्पी लहरी के साज पर और उन्हीं के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल।

ब्यूटीफुल सॉन्ग देखा जाए तो बप्पी लहरी के सांच पर उन्हीं के आवाज में साथियों के साथ इंटरव्यू फिल्म मैंने तेरे लिए 1988 वादा निभा दो मैं तेरे लिए। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को फ्रॉम द मूवी मैं तेरे लिए, अमित कुमार जी के ब्यूटीफुल आवाज में और साज है बप्पी लहरी जी का।

दिलों को मिला दो और वादा भी निभा दो। फिल्म मैंने तेरे लिए अति सुंदर बयान अमित कुमार और साथियों के आवाज में। अगला बयान आवाज दे तू कहां है मैं तो तेरे लिए, टाइटल सॉन्ग और एक बार फिर किशोर दा का सुपुत्र अमित कुमार जी के ब्यूटीफुल आवाज में, बप्पी लहरी के साज और विजयानंद जी के अल्फाज़।

gjabat e beautiful song e de film me tere ljeni këti 88 Amit Kumar ur sati u ke avanzume e ti sëndër bjana amësër ta unë suna kompoz baj Bapi Lehri avor alfazeta Devanand ji ka chota bhai Vijay Anand ji ka अगला बयान मन के मंदिर में जलती रहे एक दिल को छू लेने वाला नगमा है एड फिल्म में तेरे लिए गजल स्टाइल है कंपोज एंड अरेंज बाय महान संगीतकार द ग्रेट बप्पी लहरी और अल्फाजे है क्या अल्फाजे है विजय आनंद जी का गायक है महान गायक एड यार 90 श्री अनूप गोशाल जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये सुंदर बयान आप सुनिए

क्या बात है, रोटे खड़ा हो जाते हैं ऐसे ऐसे नगमे सुन सुनकर। ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज एंड अरेंज बाय महान संगीतकार गायक प्रोड्यूसर द ग्रेट बप्पी लहरी जी, और गाने वाला था महान गायक एड यार 80-90 श्री अनूप घोषाल जी। तो साथियों, सभी नगमे फिल्म मैंने तेरे लिए का 1988 मैंने आप सभी को सुना चुका। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो रिलीज किया गया था 1989 में, और इस फिल्म में देवानंद साहब जी ने काम किया था महान अभिनेता भैया भरत द ग्रेट मनोज कुमार जी के साथ, मलकाए हुस्न श्री रेखा जी के साथ, और महान अभिनेता शशि कपूर जी भी इस फिल्म में काम किए हैं। संगीतकार है उत्तम जगदीश जी, और गाने वाले तो एक से एक आप सुनते रहेंगे। और पहला नगमा उस फिल्म में से लेकर आ रहे हैं आप सभी के सेवा में पद्मश्री महेंद्र कपूर जी और उत्तम जगदीश जी, क्या संगीत दिया है इस फिल्म में। मिलकर सुनते हैं ये अति सुंदर टाइटल सॉन्ग, मैं एक क्लर्क हूँ।

दिल को छू लेने वाला नगमा, कुछ आंसू भी निकल आते हैं इसी से नगमे सुन सुन के ना। फ्रॉम द मूवी मैं एक क्लर्क हूँ, मनोज कुमार पे फिल्माया गया है अति सुंदर बयान, महेंद्र कपूर जी के ब्यूटीफुल आवाज में, संगीतकार उत्तम जगदीश के साथ, फिल्म क्लर्क टाइटल सॉन्ग।

साथियों, कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। किसी को चाहो तो इतना चाहो कि वो किसको और चाहने की सोच भी ना सके।

किसी और को चाहने की सोच भी ना सके। हम भूल जाते हैं उसके सारे सितम, हम भूल जाते हैं उसके सारे सितम जब उसकी थोड़ी सी मोहब्बत याद आती है। और सितम का मतलब है अंडरड्रकिंग, दिस सताना। अगला शेर जो लिखा है यारो, चलेंगे तेरे साथ तेरा साया बनकर, छोड़ ना देना बीच राह पराया समझकर। ये सब दो लाइन शेर शायरी है, यही तो खूबी है ना, इतनी कम शब्दों में लोग कुछ ना कुछ बता देते हैं, पूरी कहानी बता देते हैं। सोचती हूं कि मैं कुछ और भी सोचो, सोचती हूं कि मैं कुछ और भी सोचूं, मगर टूट जाते हैं ख्यालात तेरी याद के बाद। किसी और तरीके से भी मिल जाती है क्या मोहब्बत, किसी और तरीके से भी मिल जाती है क्या मोहब्बत, हमें तो दुआओं के सिवा कुछ

0: ने कहा, तू मेरी सांसों में, दिल में, ख्यालों में, धड़कन में, रूह में, नस नस में, ये मैंने कहा, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं यारो। शिकायतें वहां होती है जहां ऐतबार ना हो, शिकायतें वहां होती है जहां ऐतबार ना हो, मेरा तो यकीन ही तुम हो तो शिकायत कैसी। तो ये था कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स की चाहने वालों के लिए। आगे के प्रोग्राम में कुछ और कोशिश करूंगा सुनाने के लिए। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों, एक और अति सुंदर बयान, और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, और साथ दे रहा है मुकेश जी का सुपुत्र नितेन मुकेश जी। रख गीता पे हाथ, क्या बात है, महान म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना ने मिलके अति सुंदर बयान को सजाया है।
1: और बेल आइकन को प्रेस करें

आपे हाथ क्या बात है, अति सुंदर बयान एड फिल्म क्लर्क 1989 क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और नितिन मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। कंपोज एंड अरेंज बाय उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना। हमारे साथियों अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना।

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: तो साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करता आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान फ्रॉम द मूवी ललका नीटिंग टू एन सेफ द कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह श्रोताओं को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी क्या गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से यही कहते आ रहे हैं आप सभी से यारो कि हफ्ते नास्त आउत लीफ हैं कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुने के कुछ पुराने नगमे खास करके अगर आप ओत इस गोल को पसंद करते हैं तो मैं लाया हूँ कुछ नगमे पुराने जमाने के महान संगीतकार द ग्रेट जयदेव वर्मा जी के कुछ बनाए हुए धुने और उसके बाद आप सिर्फ नगमे सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजेंद्र कुमार जी ने काम किए हैं बीच में कुछ ज्ञान की बातें भी है शेर शायरी भी है तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना रफी साहब।

मुस्कुरालो महफिले सजालो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तुम्हारे प्रिय प्रिय साथियों, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ हमारे भारत देश का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का महान गायिका, जिनके गला में तो स्विंग सरस्वती माँ बसी थी, सुरों का देवी, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे ये महान संगीतकार जयदेव वर्मा जी का बनाया हुआ अति सुंदर बयान, और खास करके लिखा है नक्श लियाल पुरी जी ने, तुम्हारे लिए अग्निहोत्री आख्तन सिंह।

अति सुंदर बयान श्रोताओं ने सुना, आपकी याद आती रही। एड फिल्म गमन 1980 कंपोज बाय मास्टरो जयदेव वर्मा और आवाज थी छाया गंगुली जी का। लिखा है मखदूम मुहिदीन ने अति सुंदर बयान को, ब्यूटीफुल गजल। अगला बयान, आ प्यार की बाहों में एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी सुर का देवी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान। ऐड फिल्म चांद ग्रहण मिलकर सुनते हैं।

क्या बात है, क्या हंसी है। उस जमाने के गाने वाली द ग्रेट वॉइस के मालकिन अपार्ट स्टेम फैयाज जी, आई डू फिल्म गंबीश कंपोज बाय मास्टरो जयदेव वर्मा, आसमां पर एक सितारा, क्या बात है। फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है यारो, जोर तोर से गीत और गजल आप सुन रहे हैं संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम में। महान संगीतकार पुराने जमाने का यार, 5th से 7th मास्टर जयदेव वर्मा जी के कंपोज किए हुए रंग में आप सुन रहे हैं। अगला बयान, किया पिया पे किया जादू पर मैंने क्या किया, क्या बात है। What send the text so mooi geschreven zeg. Oud je ati zonder bejaan uit de film Tricot ka Chautha Kaun 1986 में रिलीज किया गया था। उसी फिल्म में से ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। उस जमाने के एक और महान गाने वाली, क्या बात है, रात की किया पिया, वाओ व्हाट अ नेम शेख। मिलके सुनते हैं अ ग्रेट कंपोजिंग बाय मास्टरो जयदेव वर्मा जी।

क्या बात है, किया पिया पे किया जादू, पर मैंने क्या किया, क्या बात है। डिफिकल्ट सॉन्ग गाने के लिए छाया गंगुली जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एड फिल्म त्रिको का चौथा कौन सेशन तख्त कंपोज बाय मास्टरो जयदेव, और लायरिक्स था इस गाने का लिखने वाली माया गोविंद जी ने। तो आज का इस हसीन स्पेशल माएस्ट्रो जयदेव वर्मा का एक आखिरी बयान आप सुनेंगे यारो, और धीरे धीरे भी जितने गाने मैंने सेलेक्ट कर चुका था मेरे ख्याल से आने वाले हफ्ते में वो सभी मैंने सुना चुकाऊंगा आप सभी को। तो उसके बारे में कुछ जानकारी मैंने भी रिसर्च किया है, तो वो भी मैं सुनाऊंगा आप सभी को आने वाले हफ्ते में। तो मिल के सुनते हैं रात के पिछले पहरों में आशा भोसले जी का गाया हुआ अति सुंदर बयान। ऐड फिल्म अंजलि 1957 कंपोज बाय मास्टरो जयदेव वर्मा जी, स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

0: Ja, wat een beautiful song from the movie, old movie, Angeli 1957. Maestro, J.D. Ujike Saj, or Asha Boslejike, beautiful avance, mieti chundra bian, absolutamente nessuno. Tomare pri sati oi tak taj ka ye haseen special maestro Jaydev Verma ji ka jo smart hone ko aaya. अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है, एकदम आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत यारो.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत सो सो लोबी लोबी नंगा ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश हो, इश्तिहारे हो, जरूरी खबरें या कॉमर्शियल्स आप बनवाना चाहते हैं, किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, हम लोग अपमात पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो आप सभी से सदियों से यही कहते आ रहा हूँ यारों कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी बेलटाइडेंस कंटोर यूर फन मांडग तोत फ्रेडग फन नीग यूर स्मार्गंस तोत फेव यूर स्मिडग दफ्तर कतार का नंबर 070-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर 070-362-2077। जो भी रेडियो का काम हो, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप है तो हम भी है। इसी तरह जरूर ढंढोड़ा पीते रहना यारो हम लोगों के बारे में। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाएं। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी 970-365-2247 पर आप तार करें। एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम के तरफ यारो। बीते हुए सब

0: तो तुरंत मिलके सुनते हैं ये बहुत ही प्यारे मजेदार सॉन्ग जो लोगों को उस जमाने में काफी पसंद लगते थे, कुछ को नहीं कुछ को ज्यादा। मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का ये गाया हुआ अति सुंदर बयान मिलके सुनते हैं फ्रॉम द मूवी संगम।
1: मैं बुढ़ा

Liberty, I Love You. From the movie Sangam 1964, Vivian Lobo ke Beautiful Awaaz mein composed by Shankar Jai Kishan. To hamare priye priye shrotaon sabhi nagme From the movie Sangam aap sabhi ko suna chuka hoon. Ab lekar chalte hain aap sabhi ko ek film jo also release kiya gaya tha 1964 mein, film Zindagi. और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है एक बार फिर मलकाय हुस्न विजंती माला जी के साथ और महान अभिनेता द ग्रेट राजकुमार जी महमूद हेलन और जीवन भी इस फिल्म में काम किया है संगीतकार एक बार फिर शंकर जय किशन तो फिल्म जिंदगी में से अब आप नगमे सुनेंगे अगला बयान शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी को लाते प्रोग्राम में और वो सुनाते आप सभी को पहले मिली थी सपनों में हसरत जय पूरी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान रवि साहब जी के मधुर आवाज में संगीतकार शंकर जय किशन के साथ पर